0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साब बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचाव कर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी के मार्ग में बनी सुरंगों और नेपाल के भूमिगत बिजली घरों में लोगों के फंसे होने की आशंका है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, मजबूत विकास आधार बनाने में आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता और वित्तीय प्रणाली की बेहतर सुदृढ़ता दर्शाता है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। पहली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा, किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली ICC विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। ICC ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
3: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बाल्यापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
5: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी, गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेना

0: को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिड़ैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा छठी और नवीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू होल्ड टॉक्स विद हिज बेल्जियन काउंटरपार्ट बार्ट डी वीवर इन न्यू दिल्ली टुडे। इसरो टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-5 फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुमारो। India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening. Prime Minister Narendra Modi has called for sensitizing urban local bodies to the challenges arising from urbanization, including population growth and future water requirements, and suggested organizing similar Chintan Shivirs for urban local bodies. Mr. Modi chaired the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Water organized by the Minister of Jal Shakti yesterday. He called for greater adoption of water-saving technologies. He also suggested dedicated exhibitions and workshops, including exposure to global best practices, to enable Indian manufacturers and stakeholders to develop and scale efficient solutions. We have more from a correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi emphasized that the actionable and time-bound action points emerging from the summit should be pursued through a continuous process of review and learning. Appreciating the intensive two-day deliberations, Mr. Modi suggested that the summit should not remain a one-time exercise and called for a continuous process of review and follow-up. Emphasizing Jan Bhagidari, Mr. Modi suggested promoting Jal Utsav to create greater awareness among people. Prime Minister called for making desilting a regular program and developing clear criteria and SOPs for desilting. On dam safety, Mr. Modi stress rigorous preparedness before every monsoon, adherence to prescribed precautions, and creating awareness among school students, including through suitable incorporation in educational curricula. Prime Minister further called for strengthening knowledge and capacity on water management and governance in universities and higher educational institutions. He suggested structured interstate study visits involving public representatives, officials, and farmers to facilitate practical learning and replication of successful interventions. Mr. Modi also called for robust water data governance,

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मुंबई. मैं हूं आपका अपना प्यारा आरजे अनूप, और जैसा कि मेरी प्रथा है दोस्तों, स्वागत मैं करता हूं आप सभी का एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ आपके पसंदीदा स्टेशन 107.1 FM रेनबो पर. दोस्तों, तारीख है 3 सितंबर, और आज ना हवाओं में एक अलग ही ताजगी है. आज का दिन कैलेंडर पर सिर्फ एक पन्ना नहीं है, बल्कि आज के दिन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं ना दोस्तों, जो हमें ऊंचाइयों की तरफ देखना सिखाती है और ऑल्सो लड़कर जीने की भावना का एहसास कराती है. तो आज हम बात करेंगे कुछ बेहद खास दिनों की. हमारे भारत की एक 18 साल की बेटी की भी, जो इतनी गजब की फाइटर अचीवर है ना, और कुछ उन सितारे जो है हमारे उनकी, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ है. तो दोस्तों, चाय का कप थाम लीजिए, या फिर कॉफी का, या फिर दूध का, या फिर गर्म पानी का, या फिर अरे भाई आपको जो पसंद हो उसे थाम लीजिए, पर बने रहिए यहीं एफएम रेनबो पर मेरे साथ, क्योंकि आज का सफर ना बड़ा दिलचस्प होने वाला है.
2: आज क्या है

0: आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम। रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध।
1: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: इंटरेस्ट रेट 9.25% से शुरू। महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट। शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे अनूप और हम सुन रहे हैं मस्त मुंबई। दोस्तों अगर मुंबई की बात हो ना तो बिना इन ऊंची इमारतों के कहीं ना कहीं मुंबई की कहानी अधूरी रहेगी, है ना। और क्या आप जानते हैं कि आज जो है पूरा विश्व मना रहा है वर्ल्ड स्काई स्क्रेपर डे, मतलब स्काई स्क्रेपर यानी गगनचुंबी इमारतें। और ये क्यों? क्योंकि आज ही के दिन ना 1856 में आधुनिक जो स्काई स्क्रेपर्स हैं उनके जनक यानी अमेरिकन एक आर्किटेक्ट है लुइस सुलिवन, उनका जन्मदिन हुआ था। देखिए ऐसे तो स्काई स्क्रेपर की कोई औपचारिक और आधिकारिक परिभाषा नहीं है, पर कहते हैं कि जो बिल्डिंग करीब 150 मीटर से ऊपर होती है ना उसे स्काई स्क्रेपर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो हम जब मुंबई में देखते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, भले वो लोअर परेल की स्काईलाइन हो या बीकेसी की कॉरपोरेट इमारतें, तो कहीं ना दोस्तों मन में एक बात तो लगती है कि क्या बात है ना, मतलब इंसानी सोच और इंजीनियरिंग की एक्चुअली कोई सीमा नहीं है। और सही बताऊं तो कभी कभी जब आप नीचे ज़मीन से इन बिल्डिंग्स को ऊपर देखते हो तो आपकी गर्दन दुख जाए, टोपी गिर जाए। तो ये केवल ना दोस्तों कांच के ढांचे नहीं है, ये हमारे इंसानी सपनों की ना ऊंचाई के प्रतीक है। तो आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ऊंची इमारत कहाँ देखी है और कब देखी है, तो मुझे बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 8657661071, 8657661071, आपके जवाबों का

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: Welcome back दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनूप। हम सुन रहे मस्त मुंबई और काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं। बस एक दो गाने के बाद पढ़ के सुनाऊंगा और बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी देर में नाम लेता हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, आज जब आप सुबह सोकर उठे होंगे ना तो खिड़की खोलते ही आपने सुबह की हलचल, आसमान का रंग और चारों तरफ की रौनक देखी होगी। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए हर दिन सिर्फ एक अंधेरा है, क्योंकि किसी कारणवश ना दोस्तों वह आँखों की रोशनी से वंचित है। इसी को ध्यान रखते हुए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, मतलब राष्ट्रीय नेत्रदान फोर्टनाइट। इस अभियान का मकसद सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि अंधेरे को उम्मीद की रोशनी से भरना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मरणोपरांत यानी मरने के बाद किया गया आपका एक नेत्रदान ना दो दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी में दोबारा रंग भर सकता है। सोचिए कितनी खूबसूरत बात है ना। तो कॉर्निया की जो बीमारी होती है ना दोस्तों, उससे जूझ रहे लोगों के लिए किसी का किया हुआ नेत्रदान एक वरदान चमत्कार से कम नहीं है। और शायद आंखों से बड़ी दुनिया में कोई वसीयत हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे जाने के बाद अगर हमारी आंखों से कोई दुनिया देख पाए तो कितनी सुंदर बात होगी ना। तो चलिए इस नेक काम के बारे में और गहराई से बात करेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जिसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा नेत्रदान के बारे में कुछ और जानकारी, और दूसरा कि कौन कौन सी ऊंची इमारतें हमारे लिसनर्स ने देखी

वेलकम बैक दोस्तों, और बड़े गजब के जवाब आ रहे हैं। और शुभदा जो है वो कह रही हैं कि 1969 में जब हम पहली बार मुंबई आए तो मैंने जो सबसे ऊंची इमारत देखी थी वो थी ताज होटल। बिल्कुल, क्या बात है शुभदा जी, मुंबई का शान है, मुंबई के सर पे जो ताज कहे उसे ताज होटल कहना गलत नहीं होगा। और अरुण सोमवंशी हैं जलगांव से, वो कह रहे हैं कि बहुत सालों पहले विक्रोली में आया था मैं और वहाँ पे एक LBS मार्क पे बिल्डिंग देखी थी, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी जो मैंने देखी है। और थोड़ा मजाक में शायद कह रहे हैं कि अभी उसी बिल्डिंग की लिफ्ट में भी हूँ, तो क्या बात है अरुण जी। और जल्दी से मैं कुछ नाम ले लेता हूँ जो हमें सुन रहे हैं। वो हैं अकोला से प्रमोद चिंचोड़कर जी, सांगली से प्राजक्ता अग्निहोत्री है, पुणे से सतीश वसंत कुलकर्णी जी हैं, अकोला से विजेंद्र घाटोल है, पुणे से राकेश माथुर है, उल्लासनगर से राजू वारे जी हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, और बहुत नाम है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, इस गाने के बाद सुनेंगे कुछ और बातें आपकी जो हमने अभी करनी है।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा आरजे अनूप। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें, जो सुन रहे हैं वे हैं सुबलक्ष्मी मस्तकार जी, फिरोज सिगन पोरिया जी हैं, दत्तात्रेय जी हैं, पेंच नागपुर से रविंद्र कड़पे जी हैं, ममता भटकर जी हैं, सिएटल यूएसए से हमें सुन रहे हैं रुद्र शर्मा, और पंकज महोट जी हैं, कल्पना राजू हैं उल्लासनगर से, वो कह रही हैं कि कल्याण के काकड़पाड़ा में उनके कोई रिश्तेदार हैं, वो 15वें माले पे रहते हैं और वही सबसे ऊंची वहाँ पे गई हैं। अजय साकरे जी इंदौर से हमें सुन रहे हैं, धाराशिव से यशवंत अडमुटे जी हैं, कह रहे हैं आपके गाने हमें बहुत पसंद आ रहे हैं अनूप जी, धन्यवाद, मेरी भी यही कोशिश रहती है यशवंत जी। आशुतोष देशपांडे जी सुन रहे हैं, और प्रणव शिंदे जो है वे हमें जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो वर्ली में स्थित है। क्या बात है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नेत्रदान की, और जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, तो अक्सर लोग नेत्रदान करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ गलत फहमी और भ्रम की वजह से ना पीछे हट जाते हैं। तो चलिए जल्दी से ना मिलकर कुछ गलत फहमियां हम दूर कर लेते हैं, ठीक है। पहला भ्रम क्या होता है कि नेत्रदान करने से ना मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। आई बैंक की जो मेडिकल टीम होती है ना, वो केवल आपका कॉर्निया, मतलब जो आपकी आंख की पारदर्शी परत होती है ना, वह निकालती है। इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं और चेहरे पर कोई निशान या विकृति भी नहीं आती है। दूसरा भ्रम क्या होता है कि अगर मेरी उम्र हो चुकी है या मैं चश्मा पहनता हूँ तो मैं नहीं कर सकता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी उम्र में चश्मा पहन के अगर आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है तो भी आप नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि मृत्यु के बाद नेत्रदान कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, मृत्यु के ना 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्रदान होना ज़रूरी है, और अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो तुरंत पास के आई बैंक को फ़ोन करें, और तब तक के लिए पंखा बंद कर दें, आंखों पर गीली रुई रख दें और सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें ताकि प्रक्रिया सही तरीके से हो सके। तो देखिए, आपको सुनने में लग रहा होगा कि काफ़ी सीरियस बात हो रही है, पर नेत्रदान का संकल्प हम सभी को लेना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आप ऑनलाइन नेशनल आई बैंक या किसी भी रजिस्टर्ड आई बैंक की वेबसाइट पर जाकर संकल्प फॉर्म भर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इसकी सूचना अपने घर वालों को दें, क्योंकि आपके बाद वही तो नेत्र दान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए, आने वाली पीढ़ी को रोशनी का एक तोहफा देने का आज ही हम संकल्प लेते हैं, आज ही हम नेत्रदान के लिए अपने आप को प्लेच करेंगे। अगला गाना सुनते हैं ढूंढो ढूंढो रे साजना, और इसकी गुजारिश की है पुणे से सतीश वसंत कुलकर्णी जी ने।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: जगातील सर्वात मोठं मंदिर अंगकोरवाट विष्णुधाम कंबोडिया, प्राध्यापक क्षितिज पाटुकले लिखित कॉफी टेबल बुकचा लोकार्पण सोहळा।
4: यात आहे अंगकोरवाट मंदिर समूहाची रंजक माहिती, इतिहास, वारसा आणि भरपूर सुंदर फोटो।
3: माननीय रवींद्रजीत चव्हाण, विवेक गणपुले, दुर्गेश परुळेकर आणि अलकाताई मुतालिक यांच्या उपस्थितीत
4: यावेळी अंगकोरवाट मंदिर स्थापत्य ही डॉक्युमेंटरी फिल्म दाखवण्यात येईल। सर्वांना आग्रहाचे निमंत्रण।
3: रविवार दिनांक 6 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 6 वाजता कुडाळ देशकर भवन, राजाजी पथ, स्वामीनारायण मंदिरासमोर, रामनगर, डोंबिवली पूर्व।
5: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्युझिकली युअर्स।

वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना आरजे अनूप, और एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया है। ये आया है हमारे पास प्राजक्ता अग्निहोत्री, जो सांगली से है। वो कह रही हैं कि मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूं, प्राउड ऑफ माय फादर, कि उन्होंने अपने जाने के बाद जो है अपनी आंखें जो हैं वो डोनेट की थी। तो प्राजक्ता जी, आपके फादर को मेरा सलाम। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। और सुनने वालों में हमें अभी जुड़ चुके हैं सांगली से ही जीवन और छाया भी, दादर से बाबा जी हैं और सुनील गायकवाड़ जी भी हैं। तो वेलकम आप सभी को। दोस्तों, आज ना दिल गर्व से चौड़ा हो गया है कि मुंबई की जो समंदर की लहर है ना, वो भी काफ़ी छोटी लग रही है। और इसका कारण ये है कि हमारी मुंबई की ना 18 साल की, जी हाँ, केवल 18 साल की बेटी जिया राय ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझने के बावजूद दुनिया की पहली महिला पैरा स्विमर बन चुकी है, जिन्होंने ओपन वाटर स्विमिंग का सबसे प्रतिष्ठित जो ट्रिपल क्राउन जो होता है वो अपने नाम किया है। और ये उन्हें हाल ही में न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में 20 पुलों की 48 किलोमीटर लंबी बेहद मुश्किल 20 ब्रिजेस की स्विम को केवल 8 घंटे

53 मिनट में पूरा कर उन्होंने ये इतिहास रचा है। क्या बात है, सोचिए पूरी दुनिया की पहली महिला पैरा स्विमर मुंबई की 18 साल की जिया राय। सलाम है आपको जिया। और थोड़ी जानकारी के लिए अगर मैं कहूँ कि ट्रिपल क्राउन किसे कहते हैं, तो इसमें इंग्लिश चैनल आ जाता है, इसमें कैटलिना चैनल आता है और ये मैनहट्टन स्विम होता है। तो इन तीनों बाधाओं को पार कर जिया ने साबित कर दिया है कि जब इरादे चट्टान जैसे हो ना दोस्तों, तो समंदर की तेज धाराएं, बर्फ जैसा ठंडा पानी और भारी लहरें भी ना आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो अपनी इस जीत के लिए हम जिया को तो बहुत ही शानदार बधाइयों से लबालब करना चाहते हैं। पर एक देखिए कितनी प्यारी बात है कि उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत को ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अवेयरनेस के नाम समर्पित किया है। तो FM रेनबो 101 की पूरी टीम और पूरे देश की तरफ से इस रियल लाइफ सुपर हीरो जिया रॉय को और उनके परिवार को दिल से सलाम।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आपकी प्रॉपर्टी आएगी आप ही के काम. रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लोन उपलब्ध.
2: प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, टर्म लोन और कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
1: इंटरेस्ट रेट 9.25% से शुरू. महिलाओं के लिए ब्याज दर में छूट. शर्तें लागू.
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध.
3: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे अनूप. और चलिए, अब बहुत बात हो गई ऊंची इमारतें और कठिन परिस्थितियों की, तो अब थोड़ा महफिल को चमकाते हैं. जी हाँ, आज बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे नाम भी पैदा हुए हैं जिन्होंने अलग छाप छोड़ी है हम सभी के सामने. सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के क्राइम मास्टर गोगो, यानी अपने बहुमुखी प्रतिभा के धनी शक्ति कपूर साहब की. और आज ही जो है जन्म हुआ था कंपनी और साथिया से अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय का. और स्टाइल और स्वैग के जो धनी है ना अर्जुन बाजवा, आज इनका भी जन्मदिन है. और एक जानकारी हमें दे रहे हैं प्रकाश शिंदे जी, जो हमें बता रहे हैं कि जो प्यारे लाल जी हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी से, आज उनका भी जन्मदिन है. तो थैंक यू प्रकाश जी, आप ये हमें बता रहे हैं. और थोड़ा सा अगर मैं कुछ मसाला इस बात पर डाल सकता हूँ, तो आज जो हम गाने बजा रहे हैं ना प्रकाश जी, वे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के ही है. ये एक सरप्राइज़ मैं देने वाला था, पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने ये सामने से हमें बताया. और अच्छा लगता है जब हमारे जो श्रोताएं हैं वो कुछ हमें सामने से नई नई जानकारी दें और अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा करते हैं जो हम व्हाट्सएप पर दिखा नहीं सकते ना रेडियो पर. पर अच्छा लगता है. अभी हमें सुनने वाले और भी लोग जुड़ गए हैं जिसमें वैदेही हैं, आकांक्षा मनोज सिन्हा है अहमदाबाद से, और वर्ली से स्नेहा है. शुभदा जो है हमें कह रही है कि उन्होंने भी अपनी आंखें डोनेट करने का प्लेज किया हुआ है. कितनी प्यारी बात है शुभदा. और फिरोज सिगनपुरिया जी हैं, वो हमें बता रही हैं कि मेरी आंटी ने भी आँखें डोनेट की, पर किसको गई वो पता नहीं चला हमें. तो देखिए फिरोज जी, कुछ औपचारिकताएँ होती हैं, पर देखिए आप प्लेज करिए और आगे बढ़ जाइए, शायद यही एक सही चीज़ होगी. और मिलते हैं इस गाने के बाद, जहां बात करेंगे कुछ और बर्थडेज की, और आने वाले शो में क्या होगा ये भी बताऊंगा.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनूप। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। और दोस्तों, सितारों की गिनती ना अभी ख़त्म नहीं हुई है। 3 सितंबर को सिनेमा के दौर का उस युग का भी एक जन्म हुआ है जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था बंगाली सिनेमा के महानतम लेजेंड उत्तम कुमार साहब का। और महानायक के नाम से मशहूर थे उत्तम कुमार साहब, और उनकी ना अभिनय की जो प्रतिभा थी और उसका जो जादू है, वो भी आज तक हमारे दिलों पर राज करता है। और अगर हम बात करें कुछ आध्यात्मिक दुनिया की, तो दुनिया भर में ईशा फाउंडेशन के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगियों को एक राह दिखाने वाले और सेफ सॉइल जैसी मुहिम चलाने वाले सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का भी आज जन्मदिन है। तो देखिए, फिल्मों की दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया तक वाकई आज कितने अलग अलग लोगों का बर्थडे है ना। तो दोस्तों, मस्त मुंबई का सफ़र यहीं समाप्त करूंगा मैं, पर यह बताना चाहूंगा कि 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में कुछ मुख्य समाचार, जिसके बाद मैं वापस लौटूंगा लेकर हमारा शो नमस्ते भारत, और उसमें एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगा ना जो भोपाल से आती है और जिन्होंने पूरे भारत में ऐसा नाम बनाया, पूरे विश्व में ऐसा नाम बनाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जाते जाते बस यही कहूँगा कि इमारतों की तरह, जो आज हमने बात की इमारतों की तरह, अपने इरादे ऊँचे रखिए, जिया राय की तरह दिल में जज्बा रखिए, और अपने अंदर के कलाकार को हमेशा ज़िंदा रखिए। और मिलते हैं दोस्तों कुछ ही पलों में।

0: Diwali FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: अब आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिन के राष्ट्रीय विभागीय जल सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। भारत का पांचवा विमान राहत और बचाव सहायता लेकर कल नेपाल पहुंचा। विमान में विशेष सुरंग बचाव उपकरणों से सुसज्जित 11 सदस्यीय बचाव दल और 5.5 टन आवश्यक दवाएं हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1200 से अधिक हो गई है। 4000 से अधिक लोग अभी भी लापता है। और अंत में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी रोड के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का आज उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ समाचार समाप्त।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात अगेन। मैं हूं आपका अपना आरजे अनूप और शो का नाम है नमस्ते भारत। ठीक, इस गाने के बाद आपसे जुड़ता हूं और कुछ करेंगे ऐसी बातें काफी मजेदार, काफी एनकरेज करने वाली, जो हमें बहुत प्रोत्साहित करने वाली है दोस्तों।

0: Bali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शो नमस्ते भारत में। और जैसा कि आरजे अनूप की प्रथा है ना, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करूंगा एक मुस्कुराते हुए प्रणाम के साथ। दोस्तों हम कहते हैं ना अक्सर कि स्काई इज द लिमिट, यानी आसमान ही सीमा है। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत की बात आपके सामने करूंगा ना सामने, उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो तो आसमान तो बस शुरुआत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्राइवेट एविएशन इंडस्ट्री में क्रांति लाने वाली जेटसेट गो की फाउंडर और हाल ही में शार्क टैंक में हम सभी ने उन्हें देखा है, उनमें से सबसे युवा शार्कों में से एक है कनिका टेकरीवाल। उनकी भोपाल से निकलकर दोस्तों 420 करोड़ की कंपनी खड़ी करने तक का उनका यह सफर सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो अपने सपनों को पंख देना चाहता है। तो ट्यून्ड इन रहिए क्योंकि आज की ये कहानी है ना आपके दिन में ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी भरने वाली है।

0: तकदीर मुझ पे मेहरबान है।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
4: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
3: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
4: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
1: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
5: वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे अनूप। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। हम बात कर रहे हैं आज कनिका टेकरीवाल जी की और चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती सफर से। तो भोपाल के ना एक पारंपरिक परिवार में जन्मी कनिका का रुझान बचपन से एविएशन की तरफ था और उन्होंने यूके से एविएशन में मैनेजमेंट की पढ़ाई की और भारत लौटकर सोचा कि इस सेक्टर में कुछ बड़ा करते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी की रेखा हमेशा सीधी नहीं चलती है ना। महज 21-22 साल की उम्र में जब वो अपने स्टार्टअप का सपना और एक ढांचा तैयार कर रही थी तो उन्हें पता चला कि उन्हें स्टेज 2 हॉजकिंस लिम्फोमा नाम का कैंसर डिटेक्ट हुआ। डॉक्टरों के जवाब और कीमोथेरेपी के दर्दनाक दौर के बावजूद ना कनिका टेकरीवाल जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैंसर ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मुझे हर चुनौती से लड़ने की ताकत ही दी है। 10 राउंड की कीमोथेरेपी के बाद जब वो कैंसर से जंग जीतकर बाहर आई तो उनके पास सिर्फ एक ही धुन थी, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। सच कहूँ दोस्तों तो हिम्मत जो है ना, इसी को कहते हैं। इस गाने के बाद हम जानेंगे कि कैसे मात्र 5,600 रुपए से उन्होंने कैसे इतिहास रचा है और आज जो है उनकी कंपनी 400 से ज़्यादा करोड़ बड़ी है। तो बने रहिए मेरे साथ केवल 107.1 एफएम रेनबो पर। मैं हूँ आज अनूप।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कनिका टिकरीवाल जी की, पर साथ साथ मैं आपको वापस से बताना चाहूँगा कि पूरे देश में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज भारत में दोस्तों लाखों लोगों को ना कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मांग के मुकाबले कॉर्निया डोनेशन की संख्या काफ़ी कम है। एक खूबसूरत बात यह है कि मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद किया गया आपका एक नेत्रदान जो होता है वो दो दृष्टिहीन लोगों की ज़िंदगी में रंग भर सकता है दोस्तों, और आँखों से बड़ी कोई विरासत या तोहफा क्या ही हो सकता है ना। और अगर आपके जाने के बाद अगर आपकी आँखें दुनिया की सुंदरता किसी और को दिखा सकती हैं तो क्या ही बात होगी। तो अब सवाल उठता है कि आप नेत्रदाता मतलब आई डोनर के रूप में अपने आप को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो बेहद आसान है। आप स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो NOTTO इसकी वेबसाइट पर जाकर या नेशनल आई बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्लेज फॉर्म भर सकते हैं। नोटो की वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, www.notto.mohfw.govin। और फॉर्म भरते ही आपको एक डोनर कार्ड मिल जाता है,

इसके अलावा आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल या किसी आई बैंक में जाकर भी फिजिकल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी कदम है कि अपने परिवार को अपने इस फैसले के बारे में बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद नेत्रदान की प्रक्रिया को पूरा करने की सहमति परिवार ही देता है, और मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नज़दीकी आई बैंक को सूचित करना होता है, जहाँ से डॉक्टर्स की टीम आकर मात्र 15-20 मिनट में पूरी प्रक्रिया जो होती है ना, पूरी गरिमा के साथ निभा जाती है। तो देर किस बात की है दोस्तों, इस पखवाड़े में आइए एक नया संकल्प ले कि हम आज ही नेत्रदान करेंगे, आज ही रजिस्टर करें और किसी की दुनिया में उजाला लाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी आरजे अनूप के साथ आज हम सुन रहे हैं कनिका टेकरीवाल जी की इंस्पायरिंग जर्नी। हमने बात की थी कि कैसे उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ और फिर कैसे वो उससे लड़ी, और कैंसर से जंग जीतने के बाद दोस्तों साल 2014 में कनिका ने शुरुआत की अपनी कंपनी जेट सेट गो। भारत में उस समय ना प्राइवेट जेट बुक करना बेहद कठिन था, महंगा था और बिचौलियों से भरा हुआ काम था। तो कनिका ने ये सोचा कि जब दोस्तों आप एक ऐप से टैक्सी, रिक्शा या कुछ भी बुक कर सकते हैं, तो हम बिना किसी भारी फंड के और बिना किसी बिचौलियों के हम ऐसा कुछ क्यों नहीं निर्माण कर सकते जिससे हम प्राइवेट जेट भी बुक कर सके। तो उन्होंने शुरुआत की मात्र 5,600 रुपये में और अपनी मेहनत के बल पर इस अनोखे मॉडल को खड़ा किया। और दोस्तों आज उनकी कंपनी जो है ना, भारत का एक ऐसा पारदर्शी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी से प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स बुक कर सकते हैं। सोचिए कितनी कमाल की बात है ना। और जो इंडस्ट्री पूरे पुरुषों वाले दबदबे की मानी जाती थी, वहां पर एक 24-25 साल की लड़की ने आकर पूरा गेम ही बदल दिया।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
4: वेलकम बैक दोस्तों, 107.1 पर मैं हूँ आरजे अनूप। हम बात कर रहे हैं भोपाल से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाली कनिका टेकरीवाल जी की। तो मेहनत जब रंग लाती है तो पूरी दुनिया में ना उसकी गूंज सुनाई देती है दोस्तों। कनिका टेकरीवाल की इस सफलता को दुनिया ने ऐसा सराहा कि क्या ही कहें। फोर्ब्स 30 अंडर 30 BBC की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में और यूनाइटेड नेशंस का वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जैसे अनगिनत सम्मान उनके नाम दर्ज हुए। और अब वे पे गए केवल प्राइवेट जेट्स तक ही नहीं रुक रही हैं। उनकी कंपनी भारत में एयर टैक्सीज की तकनीक पर काम कर रही है ताकि आने वाले समय में अर्बन एयर मोबिलिटी को और आसान और टिकाऊ बनाया जा सके। क्या बात है। तो एक कैंसर सर्वाइवर होने से लेकर इतनी बड़ी रिच लिस्ट में शामिल होने तक और शार्क टैंक इंडिया में एंटरप्रेनर्स की मेंटरशिप तक, कनिका ने ये साबित कर दिया दोस्तों कि अगर आपकी सोच में दम होना तो कोई मंजिल दूर नहीं है। कनिका टेकरीवाल जी के इस जज्बे को हमारा सलाम।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: वेलकम बैक दोस्तों, नमस्ते। भारत का सफ़र यहीं समाप्त होने आया है, पर आज कनिका टिकरीवाल जी की इस कहानी से हमें तीन बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे बीमारी हो या फंड्स की कमी हो, दोस्तों इरादे कभी भी टूटने नहीं चाहिए। दूसरी, मुश्किल से मुश्किल इंडस्ट्री में भी इनोवेशन के ज़रिए अपना रास्ता बनाया जा सकता है। और तीसरी और सबसे अहम, ज़िंदगी में जब भी गिरो ना तो सबसे पहले ये सोचो कि इतना गिरा हूं तो अब इससे भी ज्यादा ऊंचाई से उठकर खड़े होकर दिखाना है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये शो आपको जरूर पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको अपने सपनों को एक नई उड़ान देने में मदद भी करेगा। इसी के साथ नेत्रदान पखवाड़ा जो है वो भी हम मना रहे हैं, तो अपनी आंखों को डोनेट करने का प्लेज भी लीजिए। आज हमने बहुत प्यारी बातें करी हैं। अब मैं आरजे अनूप आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन आप बने रहिए 107.1 एफएम रेनबो पर, क्योंकि अब स्टूडियो में आने वाले हैं हमारे बहुत ही शानदार आरजे गंधर्व, जिनके दिलचस्प बातों में आपको इतना मज़ा आएगा ना क्या ही कहूँ। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपनों पर यकीन रखिए, और जाते जाते जैसा मैं हमेशा करता हूँ, जो अनूप की प्रथा है, आप सभी को मेरा एक मुस्कुराता हुआ प्रणाम।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और वापसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल मुंबई आ रहे हैं। वे भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। संवाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। ये भू समाकालीन कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप एक ने अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार यही समाप्त होते हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है एक दिलचस्प रहस्यमय कुएं की। इस कुएं में अगर आप झांक के देखोगे तो आपको पानी नहीं दिखेगा, दिखेगा आपका भविष्य। तो चलिए ये सुनते हैं कहानी आरजे गंधर्व की जुबानी, मगर उससे पहले सुनेंगे ये दमदार गीत।

सितारे रोशन होती है रातें, हो संग हम जो चले एक दूजे से मिले वक्त फिर ये साथ है, संग हम जो चले एक दूजे से मिले

बहुत समय पहले एक नगर था, अमरपुर। उस नगर के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे कहते थे भविष्य का कुआं। कहा जाता था कि उसमें झांक कर इंसान अपना भविष्य देख सकता है। किसी को दिखाई देता था अपना महल, किसी को अपना विवाह, किसी को युद्ध और किसी को अपनी मृत्यु। लेकिन कुएं की एक अजीब शर्त थी, उसमें झांकने के बाद जो कुछ देखा है उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी थी, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे भविष्य को जानना आसान है लेकिन उसे स्वीकार करना मुश्किल। सालों तक किसी ने उस कुएं में झांकने की हिम्मत ही नहीं की। फिर एक दिन नगर के राजा ने घोषणा की, मैं अपना भविष्य देखना चाहता हूं। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। राजा कुएं के पास पहुंचा, उसने नीचे झांका, कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा, फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुएं से नजर हटाई और पहली बार अपने जीवन में राजा डर गया।

0: December 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना?
2: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
1: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
2: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

की डोली में आई झिल मिलाती जुगनू की बारात। सबके

तो उस रहस्यमय दिलचस्प भविष्य दिखाने वाले कुएं में देखने के बाद राजा चौंक गया, राजा डर गया। जिंदगी में पहली बार राजा डर गया था। पर अगली सुबह राजा ने कुएं के बारे में सबको बताया। उसने कहा, मैंने देखा कि 5 साल बाद हमारा नगर बहुत समृद्ध होगा। लोग खुश हो गए। फिर एक आदमी ने पूछा, महाराज मेरा भविष्य कैसा है? राजा ने कहा, तुम्हारे पास

एक बड़ी दुकान होगी। अगले ही दिन उस आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। किसी ने अपना भविष्य देखा, उन्होंने युद्ध में अपने आप को जीतते हुए देखा, उसने सेना में भर्ती ले ली। किसी लड़की ने देखा कि उसकी शादी एक खास आदमी से होगी, उसने उसी आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा नगर बदलने लगा। लोग अपने आज के फैसले अपने कल में दिखाई देने वाली तस्वीर के हिसाब से लेने लगे। एक किसान ने खेती छोड़ दी क्योंकि उसने देखा था कि भविष्य में वो व्यापारी बनेगा। एक संगीतकार ने गाना छोड़ दिया क्योंकि उसने भविष्य में खुद को सैनिक के रूप में देखा था। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए खुश नहीं होते थे क्योंकि उन्होंने कुएं में अपना दुख देख लिया था। नगर पहले से ज्यादा व्यवस्थित था, लेकिन अजीब बात यह थी कि लोगों की जिंदगी में से अद्भुत रस, वो आश्चर्य, वो सरप्राइज गायब हो चुका था, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कल क्या होने वाला है।

0: जैसे कि मैंने आपको सबको बता दिया कि उस रहस्यमय कुएं में भविष्य दिखता है। उस नगर के सभी लोगों ने अपना भविष्य देख लिया और उनके जीवन से आश्चर्य अद्भुत रस गायब हो चुका था। उसी नगर में एक आदमी रहता था कबीर नाम का। वो साधारण कुंभार था। एक दिन राजा ने उसे बुलाया। राजा ने कहा, तुमने अभी तक कुएं में झांका क्यों नहीं? कबीर मुस्कुराया, मुझे अपना भविष्य जानना नहीं है। राजा ने पूछा, डरते हो? कबीर बोला, नहीं। फिर? कबीर ने कहा, अगर मुझे पहले से पता हो कि मेरा घड़ा टूटेगा या बिकेगा तो मैं उसे बनाते वक्त कैसा महसूस करूंगा? राजा चुप हो गया। कबीर ने फिर कहा, महाराज, मुझे अपना भविष्य नहीं चाहिए, मुझे अपना आज चाहिए। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कबीर नहीं माना। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। कबीर ने एक घड़ा बनाया, बहुत सुंदर घड़ा, लेकिन बनाते समय उसके हाथ से वो गिर गया। घड़ा टूट गया। कबीर ने टूटे हुए टुकड़ों को उठाया और हंस पड़ा, क्योंकि पहली बार उसने किसी ऐसी चीज का अनुभव किया था जिसके बारे में उसे पहले से कुछ पता नहीं था। लेकिन उसी रात राजा फिर कुएं के पास गया और इस बार कुएं में उसे अपना भविष्य नहीं दिखाई दिया, उसे कुएं में कबीर दिखाई दिया।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and

0: and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर.
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू.
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध. कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि.
2: शर्तें लागू. टोल फ्री नंबर 1800-233-0234.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. जीवन बनाए समृद्ध.

अमरपुर नगर का राजा रात में रहस्यमय कुएं के पास गया और झांक के अपना भविष्य देखने लगा। पर राजा को इस बार भविष्य नहीं दिखाई दिया, भविष्य के बजाय कुएं में कबीर था। पर वो कबीर सच में था या राजा का इमेजिनेशन था? राजा ने उसी रात कबीर को बुलाया। कुएं में मैंने तुम्हें देखा, कबीर ने पूछा, क्या करते हुए? राजा ने कहा, तुम कुएं को पत्थरों से बंद कर रहे थे। कबीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो शायद ऐसा ही होना है। अगली सुबह कबीर कुएं के पास पहुंचा, पूरा नगर उसके पीछे था। किसी ने कहा, इसे मत छुओ, हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। कबीर ने पूछा, तुम्हें अपना भविष्य चाहिए या अपनी जिंदगी? कोई जवाब नहीं आया। कबीर ने कुएं में एक पत्थर फेंका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग उसे रोकने लगे, तभी कुएं से आवाज आई, बहुत धीमी आवाज। जिस दिन इंसान अपना भविष्य जान लेता है, उस दिन उसका भविष्य उसका नहीं रहता। पूरा नगर शांत हो गया। कबीर ने आखिरी पत्थर उठाया, लेकिन उसे कुएं में डालने से पहले राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा ने पूछा, अगर हम कुआं बंद कर देंगे तो हमें अपना भविष्य कभी पता ही नहीं चलेगा। कबीर मुस्कुराया, उसने कहा, हाँ। राजा ने पूछा, और अगर भविष्य अच्छा हुआ तो? कबीर बोला, तो हम उस अच्छे भविष्य को जी लेंगे, और अगर भविष्य बुरा हुआ तो? कबीर ने कहा, तो उसे बदलने की कोशिश करेंगे।

उस दिन अमरपुर का कुआं बंद कर दिया गया। किसी को नहीं पता था कि अगले दिन क्या होगा, किसी को नहीं पता था कि 5 साल बाद क्या होगा। लोगों ने फिर से गलत फैसले लेने शुरू कर दिए गए। किसी की फसल खराब हुई, किसी का व्यापार डूबा, किसी की शादी हुई, किसी का दिल टूटा। लेकिन कुछ अजीब भी हुआ। एक बच्चे ने पहली बार अपनी पसंद का रास्ता चुना। एक बूढ़े आदमी ने फिर से चित्र बनाना शुरू किया। एक किसान ने नई फसल उगाने की कोशिश की और कबीर उसने फिर से घड़े बनाने शुरू किए। कुछ बीके, कुछ टूटे, कुछ बिल्कुल बेकार निकले, लेकिन हर सुबह वो एक नया घड़ा बनाता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगला घड़ा कैसा होगा। उसे भविष्य ही नहीं पता था। कई साल बाद उस कुएं के ऊपर एक पेड़ उगाया। उसकी शाखाएं पूरे नगर पर फैल गई। लोग कहते थे उस पेड़ को कोई भविष्य नहीं पता था, फिर भी वो हर साल नए पत्ते उगाता था। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हमें हमेशा ये जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। कभी कभी भविष्य को जानने की इच्छा से आजाद होना ही असल में ब्रेक फ्री होना है।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हैं। प्रस्तुत है आज के समाचार। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर

1250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी इस आपदा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के ट्रंप प्रशासन के नवीनतम प्रयास को न्यायालय ने रोक दिया है। अमेरिका के जिला न्यायाधीश डेबोरा बॉर्डमैन ने प्रवासी अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा ये तर्क दिए जाने के बाद अस्थाई राहत जारी की कि नया आदेश अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स और कोंकण के सिंधुदुर्ग में सावंतवाड़ी रोड के बीच आज एक नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में सीएसएमटी से इस पहली सेवा को हरी झंडी दी जाएगी। भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक हुंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा, जिसमें 20 देशों के 100 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। ये स्पर्धा 2026 श्रृंखला का तीसरा चरण है। इसके साथ ये समाचार यही समाप्त होते हैं।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्वा। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 दिल से दिल तक। स्वागत है आपका म्यूजिक कैफे में। म्यूजिक कैफे में हम आज बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी में दो आदमी हैं। एक आदमी को टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, उसकी जिंदगी ही टेक्नोलॉजी है। और दूसरा आदमी है जिसे टेक्नोलॉजी से बहुत बहुत नफरत है। चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है, मगर उससे पहले सुनते हैं ये दमदार गीत।

से बहुत प्यार है, इश्क है। उस आदमी का नाम है कबीर और दूसरे आदमी को टेक्नोलॉजी से बहुत सख्त नफरत है, उसका नाम है राघव। तो एक दिन राघव के पिता बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ, राघव उनके साथ था। वो उनकी दवाइयाँ समय पर देता था, डॉक्टर से बात करता था, रात भर उनके पास बैठा रहता था। उसे अपने पिता के साथ होने पर गर्व था, लेकिन फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स ईमेल पर भेजी, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भरने थे, इंश्योरेंस का क्लेम डिजिटली सबमिट होना था, हॉस्पिटल की सारी प्रक्रिया टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुकी थी। राघव परेशान हो गया। जिस टेक्नोलॉजी को वो सालों से अपनी जिंदगी से बाहर रखता आया था, उसी टेक्नोलॉजी के सामने अब उसकी मजबूरी खड़ी थी। उसे पहली बार लगा शायद हर चीज से दूर भागना भी समझदारी नहीं है। उधर कबीर की कहानी भी बदल रही थी। एक रात उसकी बेटी का बर्थडे था, कबीर ने उसके लिए पूरा सरप्राइज प्लान किया, ऑनलाइन गिफ्ट, वीडियो कॉल, वर्चुअल सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स को जोड़कर डिजिटल पार्टी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन कॉल खत्म होने के बाद कमरे में सिर्फ कबीर था, उसकी बेटी की हंसी अभी भी लैपटॉप में रिकॉर्डेड थी। कबीर ने स्क्रीन बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ उसने अपनी बेटी को देखे बहुत टाइम हो गया था। वो अपनी बेटी को ऑनलाइन देखता था वीडियो कॉल पर उसे महसूस नहीं करता था। टेक्नोलॉजी ने दूरी कम कर दी थी, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ने इंटीमेसी भी उतनी ही बढ़ाई थी? दोनों के पास अपने अपने जवाब थे और पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों के पास अपने अपने सवाल थे।

0: with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: तो मैं बात कर रहा था दो आदमियों की कहानियों की। राघव, जिसे टेक्नोलॉजी से बहुत नफरत है, और कबीर, जिसे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है। कुछ महीनों बाद राघव और कबीर की मुलाकात हुई। राघव ने कबीर से कहा, तुम लोग हर चीज को टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना चाहते हो। अकेलापन है, डेटिंग ऐप, नींद नहीं आ रही है, स्लीप ऐप, रास्ता नहीं पता, गूगल मैप्स, जीपीएस, खाना चाहिए, डिलीवरी ऐप, कभी खुद भी तो जी लो। कबीर मुस्कुराया। उसने कहा, और तुम लोग हर टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझते हो। तुम्हारे पिता का इंश्योरेंस क्लेम ऑनलाइन हुआ, किसने मदद की? तुम्हारे भाई ने विदेश से पैसे भेजे, कैसे आए? तुम्हारी बहन ने हॉस्पिटल के लिए ब्लड डोनर्स ढूंढे, कैसे? राघव चुप हो गया। कबीर आगे बोला, टेक्नोलॉजी समस्या नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हमारी क्षमता बन जाती है, जब हमें रास्ता याद नहीं रखना पड़ता क्योंकि जीपीएस है, जब हमें फोन नंबर्स याद नहीं रखने पड़ते क्योंकि कॉन्टैक्ट्स है, जब हमें अकेले बैठना नहीं आता क्योंकि हर साइलेंस को कंटेंट से भरना है। राघव ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा, फिर बोला, और तुम्हारी प्रॉब्लम? कबीर कुछ देर चुप रहा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपनी जिंदगी इतनी एफिशिएंटली जी है कि कभी कभी लगता है कि मैंने उसे जिया ही नहीं। दोनों हंसे और दोनों जानते थे कि ये मजाक नहीं था।

कुछ दिनों बाद राघव के पिता फिर हॉस्पिटल में थे। इस बार हालत थोड़ी गंभीर थी। राघव उनके पास बैठा था। उसने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। उसके पास फोन था, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं। पहली बार उसने टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट नहीं किया, बस उसे अपनी जगह पर रखा। उसने हॉस्पिटल का ऑनलाइन पेपर वर्क पूरा किया, डॉक्टर की रिपोर्ट्स डिजिटली संभाली, अपने परिवार को वीडियो कॉल किया और फिर फोन बंद करके अपने पिता के पास बैठ गया। उधर कबीर ने भी कुछ बदला। उसने अपनी डॉटर के साथ एक रूल बनाया, हर रात डिनर के दौरान दोनों के फोन्स बंद रहेंगे। नो नोटिफिकेशंस, नो फोटोज, नो रिकॉर्डिंग्स, बस बेटा और उसके पिता। पहली रात थोड़ी ऑकवर्ड थी, दूसरी रात बातचीत हुई, तीसरी रात उसकी बेटी ने उससे पूछा, डैड आपको याद है जब मैं छोटी बच्ची थी तो हम हर संडे बाहर जाते थे? कबीर ने कहा हाँ, लेकिन सच ये था उसे ठीक से याद नहीं था। उस रात उसने कोई फोटो नहीं निकाली, बस उसकी बेटी की बातें सुनी और शायद कई साल बाद पहली बार उसने किसी मोमेंट को कैप्चर नहीं किया, उसने उसे जी लिया। दोस्तों, ये थे हमारी म्यूजिक कैफे की कहानी। और अब आप ठीक 12:30 बजे उमंग NCERT ये खूबसूरत प्रोग्राम सुनेंगे।

0: पतंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी से।
2: लिखते हैं, जिंदगी की कठिन परिस्थितियां भी एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें खूब घुमाती हैं, निचोड़ती भी हैं, परंतु जब हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले से अधिक स्वच्छ, बेहतर और चमकदार हो जाता है।
0: इस मजेदार और अर्थपूर्ण सुविचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे लिखते हैं, कार्यक्रम उमंग के सभी

0: कार्यकर्ताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है ओम प्रकाश दशोरा, मीनाक्षी दशोरा, स्वच्छंद दशोरा और रचना दशोरा जी का। वो लिखते हैं,
0: श्रीमान जी, आपका ये प्रोग्राम बहुत शिक्षाप्रद और रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक है।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे और अंजनी अंगारे जी ने पिछले सप्ताह के कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया में इंटरनेट पर कुछ पंक्तियां भेजी हैं। लिखते हैं,
0: अपनों से जीवंत संवाद करो, सुनो, दिल से बोलो, जरा हंसो, गाओ, परिवार के संग हृदय पट खोलो जरा। जीवन उल्लास रिश्तों की मिठास है तेरे आसपास ही। इंटरनेट के मोहपाश से बाहर तो निकलो जरा।
1: धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, कल हमने बात की थी जापान की एक अनूठी सुंदर परंपरा की।
1: श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं जापान की ही एक प्यारी सी घटना। ये प्रेरक तो है ही, साथ ही साथ ये संदेश भी देती है कि जिस राष्ट्र में विद्या का सम्मान होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तभी तो जापान को दुनिया के सबसे अधिक उन्नत, शिक्षित और तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र के रूप में माना जाता है।
1: जी,
0: तो चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत।
1: श्रोताओं, आज हम आपको जापान की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मानवता और शिक्षा के प्रति सम्मान का बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
0: जी, ये कहानी है जापान के होकाइडो क्षेत्र की एक स्कूली छात्रा की। उसका नाम था काना हराडा।
1: अजीत जी, मैंने इस कहानी के बारे में सुना है कि जापान में एक रेलवे स्टेशन केवल एक स्कूल जाने वाली लड़की के लिए चलाया जाता रहा, क्या ये सच है?
0: विमलेश जी, कहानी कुछ इस तरह ही सुनाई जाती है। इंटरनेट पर कहानियां इसी प्रकार से वायरल होती हैं। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि जापान रेलवे ने केवल एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलवाई थी। आज उमंग कार्यक्रम में हम इसकी पड़ताल करेंगे। सच्चाई ये है कि काना हराडा उस छोटे स्टेशन की नियमित छात्रा यात्री थी, लेकिन ट्रेन में दूसरे यात्री भी सफर करते थे।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: जी हाँ, ये बात है बिल्कुल। स्टेशन का नाम था क्यूशिराताकी। ये जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो का एक दूरदराज इलाका है। धीरे धीरे वहाँ यात्रियों की संख्या कम होती जा रही थी क्योंकि लोग रोजगार के लिए टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों का रुख कर रहे थे। कभी कभी तो तीन चार यात्री ही हुआ करते थे।
1: तो रेलवे ने स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया।
0: रेलवे ने यात्रियों की संख्या और कम उपयोग होने वाले कई स्टेशनों को बंद करने की योजना बनाई, लेकिन प्रबंधन ने एक बात नोट की। वो ये बात थी, उस स्टेशन से एक स्कूली लड़की काना हराडा नियमित रूप से स्कूल जाती थी।
1: श्रोताओ, आइए कल्पना करते हैं, चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवाएं और एक छोटी सी बच्ची अपने स्कूल बैग के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही है, और वो भी रोज, है ना अजीत जी?
0: जी विमलेश जी, यही तो काना हराडा की कहानी का सबसे भावात्मक दृश्य है। सुबह का समय है, काना हराडा अपने घर से निकलती है, स्टेशन पहुंचती है और ट्रेन का इंतजार करती है। शायद कुछ ऐसा कहती होगी,
1: ठंड बहुत है लेकिन मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है।
0: और फिर ट्रेन आती है।
1: जी, ट्रेन रुकती है, काना हराडा उसमें बैठती है और स्कूल चली जाती है।
0: फिर क्या हुआ विमलेश जी?
1: रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन बंद करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन काना हराडा की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ट्रेन और स्टेशन की सेवा उसके स्कूल जाने के समय तक जारी रही।
0: विमलेश जी, जरा सोचिए, आज जब हम किसी छोटे से गांव में स्कूल, सड़क या बस की बात करते हैं तो अक्सर सवाल पूछा जाता है, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे?
1: सही कहा जी जी, लेकिन शिक्षा के मामले में केवल संख्या नहीं देखी जानी चाहिए। कभी कभी एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात विमलेश जी। मुझे लगता है कि एक बच्ची या बच्चा मात्र संख्या नहीं है
1: जी,
0: वे एक भविष्य है। तो श्रोताओं, फिर आखिर वो दिन आया जबकि काना हराडा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली।
1: जी, और फिर मार्च 2016 में क्यूशिराताकी स्टेशन की सेवा समाप्त कर दी गई।
0: विमलेश जी, प्रश्न उठता है कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं या श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से क्या संदेश दे सकते हैं?
1: अजीत जी, वो संदेश है, बच्चे की शिक्षा को रास्ता दीजिए।
0: जी हाँ मित्रों, न जाने हमारे आसपास कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी सहायता, थोड़ी सी संवेदना और बस एक अवसर चाहिए।
1: हो सकता है किसी बच्चे के पास किताब नहीं हो, किसी के पास स्कूल जाने का साधन न हो और किसी को परिवार का सहयोग न मिल रहा हो,
0: और यदि हम उसके रास्ते की एक छोटी सी बाधा भी दूर कर दें,
1: तो शायद हम केवल उसकी आज की समस्या नहीं उसके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। जी हाँ श्रोताओ, एक बच्चे के लिए बनाया गया रास्ता
1: आने वाली पीढ़ियों का रास्ता बन सकता है।
0: तो ये थी हमारी आज की कहानी और प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, जापान के उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी, और उस स्टेशन को कब बंद कर दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जापान के उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जहां से काना हराडा अपने स्कूल जाती थी और उसे कब बंद कर दिया गया?

0: अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800-440-559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची माला के बारे में बताया गया है कि चांदी की पायल पहनकर किस तरह वो मनोविनोद करती है और लुका छिपी के खेल से सबका मनोरंजन भी करती है।
0: माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
5: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम माला की चांदी की पायल।
6: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। पर मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में रेडियो के आविष्कार से लेकर उसके उद्भव और विकास की जानकारी एक सुंदर रेडियो नाटक के द्वारा दी गई है।
3: दोस्तों, मैं शरद हूँ।
4: और मैं सुचित्रा हूँ।
3: आज हम आपको रेडियो के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और ये भी बताएंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है।
4: जी हाँ, रेडियो यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से काम करने वाला संचार यंत्र। इसे लोग पहले जादुई डिब्बा भी कहते थे।
3: इस रोचक और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है 1865 में ब्रिटेन से। जेम्स कॉक मैक्सवेल नाम के स्कॉटिश वैज्ञानिक ने एक प्रकार की ऊर्जा के बारे में अपना एक गणितीय सिद्धांत सबके सामने प्रस्तुत किया। इस ऊर्जा का उन्होंने नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंग। उनका यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित था कि ऊर्जा हवा में प्रवाहित की जा सकती है, बेशक वो दिखाई ना पड़े।
4: परंतु मिस्टर मैक्सवेल अपने इस सिद्धांत को प्रमाणित नहीं कर सके। दूसरे वैज्ञानिक भी शायद इसे प्रमाणित नहीं कर पाते अगर 1887 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज का प्रयोग सामने न आया होता। इस प्रयोग का वास्तविक उपयोग तब हुआ जब गुग्लियेमो मार्कोनी द्वारा तरंग उत्पन्न करने वाले उपकरण में सुधार किया गया।
3: गुग्लियेमो मार्कोनी का जन्म 25 अप्रैल 1874 को इटली के बोलोगना शहर में हुआ था। उच्छृंखल प्रवृत्ति वाले इस विद्यार्थी को स्कूली पाठों में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी न थी, पर वो दूसरे आविष्कारकों के सिद्धांतों को आधार बनाकर नित नए नए प्रयोगों में व्यस्त रहता था। पिता को मार्कोनी की ये गतिविधियां बिल्कुल न भाती थी। एक दिन की बात है,
5: मैं तो इस बच्चे से तंग आ गया हूं, ना पढ़ना ना लिखना, खेल खेल खेल, क्या करेगा ये?
6: नहीं नहीं, वो सिर्फ खेलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, कई बार उसके प्रयोग बड़े रोचक होते हैं।
5: सिर्फ प्रयोग करने से क्या वो अपने पांव पर खड़ा हो सकता है बिना पढ़ाई के?
6: सुनिए, मेरी भी यही चिंता है।
5: ना जाने क्या होगा इसका।
6: भौतिकी और विद्युत विज्ञान में उसकी बड़ी रुचि है, इसी बात पर वो अक्सर प्रयोग करता रहता है। उसके चचेरे भाई बहन तो उसके प्रयोगों से बड़े प्रभावित हैं।
5: अरे वो सब तो ठीक है, पर
6: न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जी कि आगे चलकर मार्कोनी एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
4: एक सफल जीवन की खोज में मार्कोनी औपचारिक शिक्षा तो न ले पाए, पर सफलता पा लेने की दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने रेडियो जैसा नायाब आविष्कार इस जगत के सामने प्रस्तुत किया। ये 1893 की बात है। गुग्लियेमो मार्कोनी जब मात्र 20 वर्ष का था, तब उसने पहली बार बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों को 3 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और ये प्रयोग उसने किसी बड़ी प्रयोगशाला में नहीं, अपने घर पर ही किया।
7: ऐसे ऐसे
8: जोर से मारना।
7: सैम है ना? अरे इधर तू आओ। हाँ हाँ आते हैं। सैम है ना, क्या तुम लोग तैयार हो?
8: हम तो तैयार है मार्कोनी, पर ये तो बताओ तुम करने क्या जा रहे हो?
7: आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक अद्भुत प्रयोग।
9: कैसा प्रयोग?
7: आवाजों को बिना तार के हवा में एक जगह से दूसरी जगह

0: आता है बीजने का प्रयोग
1: बिना तार के। भला ये कैसे संभव है?
0: संभव तो है भाई, संभव है। अच्छा देखो, मैं अपना उपकरण चालू करता हूँ। इसे कहते हैं ट्रांसमीटर।
1: अच्छा
0: अच्छा, अब तुम जल्दी से भागकर घर पहुँच जाओ।
2: अच्छा।
0: वहाँ किचन के पास वाले कमरे में मैंने रिसीवर लगा रखा है। उसी के साथ एक घंटी भी लगा रखी है। सिग्नल पहुँचते ही घंटी बज उठेगी।
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हम जाते हैं, हम जाते हैं।
0: फिर जाओ ना। पहुँच गए?
3: हाँ हाँ,
0: ठीक है, अब मैं रेडियो सिग्नल भेज रहा हूँ।
3: हाँ हाँ, भेजो, जल्दी भेजो।
1: अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है!
3: क्या क्या बात है!
1: अरे ये तो जादू की तरह लगता है। वाह, क्या बात है! अरे वाह,
0: सिग्नल मिला?
1: हाँ हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प है, अद्भुत। शाबाश मार्कोनी, बधाई हो, बधाई।
4: और उस दिन मार्कोनी ने पहले एक कमरे से दूसरे कमरे तक, फिर घर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बागीचे तक बिना तार इस्तेमाल किए विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजा।
5: सन 1897 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ और सिग्नल कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने एक साल बाद सन 1898 में इंग्लैंड के चेम्सफोर्ड में संसार की पहली रेडियो फैक्ट्री खोली।
4: फिर वर्ष 1900 में ट्यून्ड टेलीग्राफी के लिए प्रसिद्ध 7777 पेटेंट नंबर मार्कोनी ने लिया, और उन्होंने इस उपकरण का प्रयोग पहला वायरलेस संकेत कनाडा और इंग्लैंड के बीच अटलांटिक महासागर के पार यानी के 3220 किलोमीटर की दूरी तक भेजने में किया।

0: इस प्रकार ये प्रयास इससे पहले के प्रयोग से 100 गुना अधिक दूरी तय कर सका। इससे ये सिद्ध हो गया कि रेडियो तरंगों पर पृथ्वी की वक्र आकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रयोग एक मील का पत्थर साबित हुआ।
1: ये संदेश भेजे गए इंग्लैंड और कनाडा के बीच मार्कोनी के रेडियो द्वारा, जिसमें मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया था। ये कोड सैमुअल मोर्स की देन है, जो मार्कोनी की ही तरह कल्पनाशील व्यक्ति थे।
0: बात 24 दिसंबर सन 1906 की है। अमरीकी तट के नजदीक अटलांटिक महासागर में जहाजों पर रेडियो ऑपरेटर।
2: आज बड़ी कड़ाके की ठंड है।
3: हाँ डेविड, ठंड तो है ही, और फिर समुद्री यात्रा ना जाने कब पहुंचेंगे।
2: मैं भी यही सोच रहा हूँ रॉबर्ट, घर में होते तो मजा आ जाता। कल क्रिसमस भी तो है ना।
3: काश इस वक्त हम अपने परिवार के साथ होते।
2: लेकिन ये मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा। ये बर्फीली आंधियां और ऊपर से घने बादल।
3: कप्तान ने कहा था कि कल हम बंदरगाह में होंगे, लेकिन अभी तक हमें जहाज को आगे बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिला है, शायद मौसम की वजह से।
2: रॉबर्ट, रेडियो सिग्नल को लगातार सुनते रहो, शायद आगे बढ़ने का सिग्नल मिल जाए।
3: देखता हूँ।

0: सुन सुन, ऐसा करो रॉबर्ट, दूसरी फ्रीक्वेंसी पर देखो।
1: ये क्या,
0: ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है?

0: अरे रॉबर्ट, रॉबर्ट, ये तो क्रिसमस कैरोल है।
1: अद्भुत, अति सुंदर।
2: For God so loved his world that he sent his only begotten son. I wish you a merry Christmas.
0: अरे वाह, अरे वाह, वाह! रेडियो पर आदमी की आवाज, अद्भुत, सचमुच अद्भुत।
1: वाह, क्या बात है,
0: वाह! पहली बार सुना है ऐसा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वाह,
3: ये आवाज कनाडा के रेगिनाल्ड फेसेंडन की थी। ये पहला अवसर था जब रेडियो पर मानवीय आवाज सुनाई पड़ी, और इस तरह मानवता को मिला क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विज्ञान का एक अनमोल उपहार। इसमें सिर्फ कुछ वाक्य, एक गीत और वायलिन का संगीत था।
4: बहुत जल्दी ही लोगों ने मार्कोनी की कंपनी द्वारा बनाए गए इस उपकरण के माध्यम से लंबी लंबी दूरियों के पार भी संदेश भेजना और ग्रहण करना शुरू कर दिया।
3: मार्कोनी के इस आविष्कार से पहले जहाज यात्रियों के लिए बंदरगाह पर पहुंचने से पहले किसी भी प्रकार का संदेश संचार संभव न था।
4: सन 1912 अप्रैल रविवार का दिन था। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा यात्री जहाज एक भीषण हादसे में बर्फ की शिला से टकराकर डूब गया।
3: इन दावों के बावजूद कि यह जहाज डूब नहीं सकता,
0: ये क्या हो रहा है? लगता है जहाज किसी चीज से, शायद बर्फ की शिला से टकराया है।
5: अरे अरे भागो भागो, बाहर निकलो, भागो डैक की ओर भागो।
6: क्या हो गया?
7: अरे ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
8: ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? जहाज पूरी तरह हिल रहा है।
9: हेडपोर्ट कितनी बड़ी खराब पड़ गई है। अरे बचाओ, अरे तो पानी भर रहा
0: है। जहाज की स्पीड कम करो, ऑपरेट द बैक प्रोपेलर, जहाज को पीछे करो, एंड कॉल द रेडियो ऑपरेटर चेक एंड हरे।
10: यस यस कैप्टन स्मिथ, यस।
0: ऑपरेटर जैक, इमरजेंसी मैसेज भेजो, सेव टाइटैनिक, शिप लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। आई रिपीट, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। और हेल्प, लाइफ सीधा भेजो, सेंड जनरल कॉल डिस्ट्रेस।
8: जल्दी जल्दी करो,
0: जीवन रक्षक नावों को नीचे उतारो, लाइफ बोट उतारो, लाइफ बोट को नीचे उतारो।
11: Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.
3: क्या आपको पता है, टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने मार्कोनी कंपनी को मॉर्स कोड पर क्या संदेश भेजा था? संदेश था,
4: सेव अस, टाइटैनिक सिंकिंग, हेल्प हेल्प,
3: जो मार्कोनी के रेडियो पर इस प्रकार सुनाई पड़ा था।

वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स और हेरल्ड को मार्कोनी टेलीग्राफ कंपनी ने टाइटैनिक जहाज पर संदेश भेजने और लेने के लिए नियुक्त किया था। कैसी विडंबना है, जैक फिलिप्स, जिसकी उम्र 28 साल थी, टाइटैनिक जहाज के साथ ही डूब गया।

0: और हेरल्ड ब्राइट, जिसकी उम्र 22 साल थी, बच गया।
1: बाद में इस हादसे में बचे एक यात्री ने भी ये बताया कि रेडियो ऑपरेटर ने मार्कोनी कंपनी और नजदीक के जहाजों को मदद के लिए किस प्रकार टेलीग्राफिक संदेश को भेजा। इस बात का पूरा पूरा श्रेय रेडियो को ही जाता है।
0: 1909 में मार्कोनी और फर्डिनेंड ब्रायन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला, पर मार्कोनी द्वारा नोबेल पुरस्कार लेने की बात ही कुछ और है। स्वयं उनके अनुसार वे ना कोई वैज्ञानिक थे और ना ही कोई आविष्कारक, पर वे बहुत ही विलक्षण थे।
2: Congratulations, Mr. Marconi. You are really wonderful. And so is your amazing invention. Congratulations to you.
3: धन्यवाद ऐसे नायाब आविष्कार के लिए।
4: आपने तो कमाल ही कर दिया। कितना अद्भुत है आपका रेडियो। वाह वाह वाह वाह वाह।
5: सच में कमाल है। बिना तार का ये काम करने वाला रेडियो विश्वास नहीं होता। विश्वास
3: नहीं होता। मिस्टर मार्कोनी
6: जी,
3: अच्छा ये बताइए,
6: ये आविष्कार करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।
3: गुड गुड।
6: सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से मैं एक ऐसा उपकरण तैयार कर सका हूं जो पूरे विश्व में मेल मिलाप की भावना विकसित कर पाएगा।
7: धन्यवाद।

0: 20 जुलाई 1937 को रोम में उनकी मृत्यु हुई। मार्कोनी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विश्व भर के सभी रेडियो स्टेशनों ने 2 मिनट का मौन रखा। आज भी विश्व उनके अनूठे योगदान रेडियो को आभार सहित याद करता है।
1: तब से अब तक रेडियो में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। आज भी बहुत सारे संचार माध्यमों के होते हुए भी इस नायाब जादुई डिब्बे का आकर्षण समय के साथ कुछ कम नहीं हुआ है।
2: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो की कहानी। अब हमारा समय समाप्त हुआ चाहता है, तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, चेतना, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे गंधर्व। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। हिट एंड हॉट सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम आपके पसंदीदा गाने प्ले करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।

बहुत ही खूबसूरत फरमाइश। कुछ गाने हम सुनते हैं, कुछ गाने हम महसूस करते हैं। इस बेहतरीन फरमाइश, ये बेहतरीन फरमाइश की थी अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर राही, प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, लाडला टुकटुक गवाणकर ने। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

बहुत ही खूबसूरत फरमाइश। ये फरमाइश की थी मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास, सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने बिहार से। चलिए अगला गाना सुनते हैं।

हम। ये बेहतरीन फरमाइश की थी पंकज मोहड़ जी ने अमरावती से। हमारा म्यूजिकल सफर खत्म होने जा रहा है दोस्तों, जल्द ही वापस मिलेंगे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1, दिल से दिल तक। चलिए सुनते हैं हिट एंड हॉट सेगमेंट का ये आखिरी गाना।

0: He inquired about the arrangements being made in relief camps. The Prime Minister directed that flood relief operations be continuously monitored and that immediate relief be provided to those affected. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted aerial survey of the flood-affected areas of Farrukhabad district. The India Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over East Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department predicted heavy rainfall with thunderstorms and lightning over Bihar, East Rajasthan, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttarakhand and Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9 Victor Lai of Canada in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters Super 750 badminton tournament in Shenzhen today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Belgium agree to double bilateral trade in next 5 years. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Belgian counterpart in New Delhi. Agreements signed in areas of renewable energy, cybercrime and diplomatic training. Defence Minister Rajnath Singh and his Belgian counterpart commit to expanding bilateral defence ties through dialogue, high-level visits and capacity building. Finance Minister Nirmala Sitharaman meets investors at high-level business roundtable in New York, highlights government's focus on artificial intelligence, data centers and global capability centers. In Bihar, water level in Ganga River rises, increasing flood threat in new areas. And in badminton, Kidambi Srikanth beat Victor Lai of Canada to enter men's singles quarterfinals of China Masters in Shenzhen. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री टेओ फ्रॉन्कन ने संवाद उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने एआई डेटा केंद्रों और वैश्विक क्षमता केंद्रों पर सरकार का दृष्टिकोण दोहराया बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है
2: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी
2: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज

0: वो एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
1: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैस्डैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर 1 ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है।

0: उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल GST संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक ज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जलंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
5: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मानगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटे। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर

और मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा। और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कैसा भत्ता चाह के साथी देव धावला कसा उठा उठी खिंडारू पजल भिंत

0: नमस्कार, पेश है एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम की प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा, साइबर क्राइम, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग पर कई ज्ञापन समझौते किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने भविष्य की परियोजनाओं के लिए आपसी सहयोग करने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन निवेशकों के समक्ष भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। कहा, वैश्विक व्यवधानों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा कीमतों के बल पर भारत विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह IOS-5 का कल प्रक्षेपण करेगा। यह उपग्रह GSLV-F17 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री और वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग ने अगले दो दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की। लद्दाख में 4 और 5 सितंबर को मद्रास महोत्सव आयोजित किया जाएगा। और खेलों में कादिंबी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। महिला एशिया कप 2020 में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के लिए।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हर बार की तरह हमारा आज का ये कार्यक्रम आत्मिक होने वाला है, क्यों कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मेहमान जिन्होंने 40 वर्षों तक सेनाओं के जरिए सेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद आज सेवानिवृत्त होने पर भी अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्म से उन्होंने अपने लिए एक नए आयाम ढूंढे हैं। उनके नए आयाम क्या हैं ये बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। अति विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये एक्स डायरेक्टर जनरल वर्क्स इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक ऐसे ऑफिसर हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारी सेना को सशक्त किया है। अक्सर हम यही कहते हैं कि सेना का अर्थ है हमारे तमाम वो फौजी जो मैदान जंग में जाकर लड़ते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ये फौजी सेना को सशक्त करते हैं, अपने साथियों को सशक्त करते हैं? अब आप पूछेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है, मेहमान है, ये एक सोल्जर होने के साथ साथ एक मिलिट्री इंजीनियर भी हैं और इन्होंने सेना में रहते हुए असीम योगदान दिए हैं। तो आइए सर्वप्रथम सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अशोक कुमार जी का। अशोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।
0: जी, जब भी हमारे इस कार्यक्रम में आप जैसी हस्तियां शिरकत करती हैं, पहुंचती हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरी ओर से यही रहता है कि वो कौन सी कैसी बात थी, कौन सी कैसी चाह थी जो आपको भारतीय सेनाओं की तरफ ले गई, क्या वो बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि अगर जाना है तो बस सेना में ही जाना है और सेना के माध्यम से ही अपने देश प्रेम को स्थापित करना है?
1: सो गीतिका, वो दौर ऐसा था जब हमारे पास विकल्प कुछ थे भी और कुछ नहीं भी थे, पर सब में जो परम विकल्प था वो फौज ज्वाइन करना था। और वह इसलिए भी था कि हमारे पिताजी स्वयं फौज में थे, वो इंडियन नेवी में थे और उनके साथ में हम कई वर्षों तक रहे, अलग अलग जगहों पर हमने गए और दिल में एक ऐसी उम्मीद थी कि हम भी उनके पद्म चिन्हों पर चलेंगे और फौज में जाने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब हुआ।
0: वाह, क्या बात है। अक्सर ये देखा जाता है जब वो बच्चे जिनकी परवरिश फौजी माहौल में होती है तो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में जिंदगी जीते हैं, तो क्या वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो बचपन से ही आपको रास आया?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे पिताजी हमें बचपन से ही उन्होंने जो सिखलाई करी, वो चाहते थे कि जैसा वो अपने नियमित रूप में करते हैं वैसा ही हम सब करें। हमने कोशिश की कि हम उनके पदचिन्हों पर चल पड़ें और उनके जैसे काफ़ी चीज़ें सीखें। कुछ हमने सीखा, कुछ आज भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
0: वाह, क्या बात है। तो सीखने सिखाने का सिलसिला बरकरार है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि भले ही घर में माहौल स्ट्रिक्ट रहा हो तो इसके बीच शैतानियां ना हुई हो ऐसा भी मुमकिन नहीं?
1: स्ट्रिक्ट माहौल आई थिंक उन दिनों में जो तरीके थे काम करने के वो इस तरह के थे कि जब तक बच्चे को एक एक खुराक ना मिल जाती तो वो आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन आज का ज़माना शायद बदल चुका है, लेकिन हम उन चीज़ों से यूज्ड टू हो चुके थे और हम अपने तरीके से, हम अपने दोस्तों के साथ में शैतानियाँ भी करते थे, खेलकूद भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और अपने काम में कोशिश की कि हम वो अचीव कर पाएँ जो हम चाहते थे। और फौज का जो हमारा एक लक्ष्य था वो हमने उन सब चीज़ों में रहते हुए हासिल किया।
0: जी, ऐसा भी दौर आता होगा कि पिताजी लंबे समय तक कहीं बाहर रहते हों, टूर्स पे रहते हों, अपने मिशंस पर रहते हों, तो उस बीच उनके साथ संपर्क ना हो पाता हो, तो ऐसे में किसको अपनी बात कहते और कैसे घर का सामंजस्य माताजी बनाती?
1: ये सब चीज़ें आई थिंक फौज में जब आप रहते हैं, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स, सो आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम ज़िंदगी का एक रूप जो है वो अपने आप में एक तरीके से ढलने लग जाता है जब आप

0: मालूम होता है कि आपके पिताजी जब आपके साथ में नहीं है तो आपने क्या क्या कार्य करने हैं, मदर के साथ में कैसे डील करना है, अपने जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में कैसे करना है और अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे रखना है। उन दिनों में मोबाइल्स नहीं होते थे, कम्युनिकेशन के ज़रिए चिट्ठियों के द्वारा होते थे, तो उनका एक अलग खुशी थी उसमें, एक अलग तरीका था और हमें मालूम होता था कि कब पिताजी आएंगे और कब यू नो हमारी खिंचाई होगी, लेकिन साथ ही साथ हम अपना काम करते रहते थे और वो सारी जिम्मेवारियां भी निभाते थे जो यू नो आज कम देखने को मिलती हैं।
1: एक बच्चे के लिए उसके पिता उसके रोल मॉडल होते हैं, तो जब कभी आपने अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा उस वक्त क्या फीलिंग आई, उस वक्त क्या सोचा आपने?
0: सो यूनिफॉर्म में तो जब से हम पैदा हुए और हमारी यू नो हम एक उस स्टेज में आए जब, तो हमने अपने पिताजी को हमेशा यूनिफॉर्म में देखा और अच्छा लगता था। वो यूनिफॉर्म सफ़ेद रंग की होती थी और वो नेवी में यू नो कार्यरत थे, सो काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर उन्होंने पोस्टिंग करी, तो हमारा भी इरादा था कि हम भी फौज में जाएं। हम चाहते थे कि हम एयरफोर्स में जा पाएँ, लेकिन हम फाइनली आर्मी में गए और आज हमें कोई शक नहीं है कि जो भी हमने आर्मी से सीखा वो काबिले तारीफ है और हमारे जीवन की जो कार्यशैली है वो उससे हमने बहुत कुछ सीख कर आज हम एक सशक्त इंसान बने हैं। इसका मैं धन्यवाद अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को जो आज हमारे बीच में नहीं है, पिताजी हैं तो उन सबको देता हूँ जिनके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
1: जी निश्चित रूप से। वो पल कौन सा पल था, कैसा पल था और कब घटित हुआ जब आपने आर्मी का एग्जाम क्लियर किया? क्या थी वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप एक ऑफिसर बने इंडियन आर्मी में?
0: उन दिनों में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और अमूमन फौजी बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही स्कूलों में पढ़ते थे और उनका काफ़ी नाम हुआ करता था और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, तो हमारी ये जिद्दोजहद थी कि हम पहला हमारा जो लक्ष्य होगा वो फौज का होगा। सो पहला जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उन दिनों में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसको हम NDA कहते हैं उसके एग्ज़ाम हुआ करते थे, वो उन दिनों में 11वीं के बाद होते थे और मुझे याद है कि हम ग्रुप बना के सारे दोस्त एक साथ पढ़ा लिखा करते थे और कोशिश करते थे कि हम उसको निकल पाएं। और सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने अपना जो इम्तिहान था वो पहली दफ़ा में क्लियर कर लिया था, लेकिन NDA के दौरान में कुछ ऐसे इश्यूज आए कि हम ज्वाइन नहीं कर पाए। वो कसक जो है दिल में लगी रही और ये रहा कि हमें फ़ौज में ही जाना है, तो हमने 3 साल और मशक्क़त की, ग्रेजुएशन की, बम्बई यूनिवर्सिटी से BSc में उत्तीर्ण हुए और फिर दोबारा से हमने उसी सेंटर में उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार जूझे और फिर पहली दफ़ा में हमने एग्ज़ाम क्लियर किया। और एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो थी लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से हम आर्मी में आ गए। सो एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, मुझे कोई ऐसी शिकायत या गिला नहीं है, लेकिन जो सफ़र रहा बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, हमने ज़िंदगी के कई दायरे कई पहलू ऐसे सीखे जो आज तक हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि हम अपने बच्चों में भी ये चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं।
1: जी तो सन 1986 में आपने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया CDS एग्ज़ाम
0: जी, हाँ।
1: और फिर 1987 में आप कमीशन्ड हुए इंडियन आर्मी में।
0: हाँ जी
1: जी। तो फिर पहली पोस्टिंग कहाँ मिली, कौन सी रेजिमेंट ज्वाइन किया आपने?
0: जब हमने ट्रेनिंग के दौरान IMS से निकले तो कुछ दिनों के लिए हम रुड़की में एक छोटा ट्रेनिंग कैप्सूल होता है जिसको करने के बाद में हमारी पहली पोस्टिंग सिक्किम में आई, जो कि आपने सुना होगा नथुला पोस्ट है जो चाइना के अक्रॉस है। सो हमारी यूनिट की एक टुकड़ी वहाँ पर तैनात थी और हम जैसे ही यूनिट पहुँचे कुछ दिन कैलिम्पोंग एक जगह है जहाँ पर रहने के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमको वहाँ भेज दिया गया और ऑलमोस्ट 2 साल हम वहाँ पर रहे और जो कुछ वो सीखने को मिला उस दौरान में वो काफ़ी काबिले तारीफ था। हमने अपने आप भी काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन जो हमारे सरदार साहिबान और हमारे जवान और हमारे जो अफसरान थे उनके ज़रिए हमने काफ़ी कुछ सीख ली जो आज तक हमारे साथ में बरकरार है।
1: क्या बात है। एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे, वैसे तो भारतीय जो सेना है जो ट्रेनिंग सबको दी जाती है टफेस्ट ट्रेनिंग्स कहा जाता है वर्ल्ड में, लेकिन ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं आपकी जिम्मेदारियां आपको दी जाती हैं, आप पर कार्यभार दिया जाता है, आपको डिसीजन लेने होते हैं, कमांड सुनने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है, तो वो मंजर कैसा था? क्या आपकी कल्पनाओं से एकदम अलग था या जो आप सोच के गए थे बिल्कुल वैसा था?
0: आपका जो सोचने का तरीका होता है वो आपकी एक अपनी यू नो तरतीब होती है कि आप सोचते हैं कि ज़िंदगी की यू नो चीज़ें इस तरह से चलेंगी, लेकिन जब आप ज़मीन पर हकीकत में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, कई चीज़ें उसके विपरीत भी होती हैं, और आप देखते हैं कि ज़िंदगी के मायने कुछ और भी हैं, और उसमें जो सीखने सिखाने वाले लोग हैं, आपके जो सीनियर अफसरान हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो आपकी टुकड़ी के जवान हैं, जो JCOs हैं

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका ओनियाल और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार। हम कहते हैं ये कि हम में वो जज्बा है, हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम हर जंग में फतेह हासिल कर सकते हैं, पर सच मानिए ये जज्बा भी हमें हमारे सिपाहियों, हमारे सोल्जर्स, हमारी भारतीय सेना से मिलता है और जिसकी जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मेजर जनरल अशोक कुमार जी। अशोक जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं, खासतौर पर जब आपने सर्विसेज ज्वाइन की, उससे पहले ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर नियुक्त किया गया, आपको पोस्टिंग दी गई, लेकिन इंजीनियरिंग, क्योंकि मिलिट्री इंजीनियर आप रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ही इस विभाग को ही आपने चुना या फोर्सेज ने आपके लिए इस विभाग को चुना, किस तरह थी ये प्रक्रिया?
1: सो ट्रेनिंग के दौरान आपकी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको मौका दिया जाता है कि आप किस संस्था में, या इन्वेंट्री में, आर्टलरी में, या इंजीनियर्स में जाना चाहते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशंस होती हैं, अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप जो तकनीकी ब्रांचेस हैं जिसमें इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स आते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बकायदा कि आपने बीएससी बैकग्राउंड किया हो और आपके पास वो डिग्री हासिल हो। सो हमारे पास में विकल्प था कि हम इंजीनियर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। उन दिनों में इसमें काफ़ी कंपटीशन था, लोग काफ़ी जाना चाहते थे। तो हमारे कोर्स के दौरान हमारे 28 वैकेंसियां थीं और हम तकरीबन 200 लोग थे जिन्होंने इंजीनियर्स में ऑप्ट किया था। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी किस्मत भी थी, वो बैचेस में बनाते थे और हर बैच में 2 से 3 वैकेंसीज आती थी। सो आई वाज लकी कि हमें जो मुझे ज़रूरत चाहिए था वो मिला, एंड खुशी का माहौल था जब आपने वॉर ऑफ इंजीनियर्स में ज्वाइन किया। ये एक ऐसा कोर है जिसमें आप लड़ाई के दौरान में सबसे पहले दुश्मन लड़ाई में जाते हैं और लड़ाई ख़त्म होने के बाद में सबसे आखिर में आप पूरा कार्य करके बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज, एंड इसमें आपको पढ़ाई लिखाई काफ़ी करनी पड़ती है, जो कि एक आम धारणा है कि फ़ौज में जब बंदा जाता है तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बट एज इंजीनियर्स हमें ज़रूरत है कि हम इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करें, और अगर आपकी चेष्टा है तो आप आगे उसको फर्दर एग्ज़ाम दे के आप अपने मास्टर्स भी कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान किया। सो कहना कि फ़ौज में जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई काफ़ी है, और आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना करना चाहते हैं, बिकॉज इनका उपयोग लड़ाई के दौरान भी आता है
0: जी। पढ़ाई का सिलसिला तो मुझे लगता है आपका बरकरार रहा, जैसे आपने खुद कहा आपने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद एमटेक भी किया, एमफिल किया आपने मैनेजमेंट स्टडीज।
1: जी हाँ,
0: ये सिलसिला जो था, ये सिलसिला फौज में रहते रहते बरकरार रहा।
1: ये सिलसिला फ़ौज में रहते रहते बरकरार रहा। कई फ़ौज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है, कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपने जद्दोजहद करके और अपने आप को उत्तीर्ण हासिल करना होता है। सबको मौका ज़रूर मिलता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो आई वाज वन ऑफ दोज लकी वंस हु कुड मैनेज टू डू दीज कोर्सेज, एंड पढ़ाई भी कर पाए, और जिससे हमारे को अच्छी ख्याति हासिल हुई और हमारे प्रमोशंस में भी इसके काफ़ी काम आए।
0: बहुत खूब। अब बात की जाए मिलिट्री इंजीनियर की, मिलिट्री इंजीनियरिंग की, अक्सर हम यही सोचते हैं कि फौज का अर्थ है हमारे वो सेनानी, हमारे वीर, हमारे सैनिक जो मैदान जंग में जाते हैं, जंग लड़ते हैं और हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब भारतीय फौज की बात आती है और जब हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स हमारी सेनाओं को कैसे सशक्त करता है, क्या भूमिका रहती है इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियर्स की?
1: आज का दौर आपने देखा होगा, जब प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी लड़ाइयां देश के बाहर में हो रही हैं और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं,

0: हैं, तो तकनीकी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे फोर्सेस में भी इंजीनियरिंग का होना बहुत ही अहमियत रखता है। और कहते हैं कि कोर ऑफ इंजीनियर्स का मायने है कि जब आप लड़ाई के दौरान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आप अपने फोर्सेस को मोबिलिटी प्रदान करते हैं और दुश्मन को मोबिलिटी डिनाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका जो अचीवेबल टारगेट है वो अचीव हो और दुश्मन को आपने टारगेट को अचीव करने में आप बाधा बने। सो आपने चाहे सुरंगें बिछानी हैं, चाहे आपने ब्रिजेस बनाने हैं, चाहे आपने नौका के जरिए नदी को पार करवाना है, उसमें बड़ा बड़ा जो असला है, सामान है, टैंक्स हैं, ये सब पार कराने और लाने और ले जाने की जिम्मेवारी कोर ऑफ इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ जब दुश्मन दूसरी तरफ से हमला करता है तो उसमें माइने या सुरंग लगाने का कार्य भी इंजीनियर्स को दिया जाता है, जो कि हम अपनी सूझबूझ और हमारे सिखलाई के तरीके से करते हैं। इसी प्रकार जब दुश्मन की जो मोर्चा है उसको हम हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर हम रिकूप करके दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करते हैं और जो हमारी टुकड़ियाँ हैं पीछे उनको सामने लाके फिर लड़ाई को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब लड़ाई लगती है तो हम एयरफोर्स के साथ में भी मदद करते हैं, जब हमारे हवाई अड्डे होते हैं उनको बनाने में, या कोई नुकसान हो गया है उसको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने का काम भी हमारा है। जैसे सिमिलरली नेवी के जहाज़ों के लिए जो युद्ध पोत वगैरह हैं उसमें जो चीज़ें बनती हैं या कोई चीज़ बिगड़ गई है उसको भी ठीक करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार में लाने का और लड़ाई के लिए सशक्त बनाने का कार्य भी हम लोगों का होता है। सो काफ़ी काम होते हैं जो कि तभी हासिल हो सकते हैं जब आपने पीस दौरान में अच्छी पढ़ाई की हो, उसको अमल में लाए हों और देश के सुरक्षा कार्यों में उसकी आपने एक नीति बनाई है जिसके कारण हम यू नो वी अचीव व्हाट वी वांट टू अचीव।
1: जी, तो ना केवल भारतीय सेना को सशक्त करती है मिलिट्री इंजीनियर्स, बल्कि आम जनमानस के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही सार्थक साबित होती है। यू आर हेल्पफुल टू द एंटायर नेशन इन डिफरेंट वेज। तो किन किन तरीकों से हमारी मिलिट्री इंजीनियर्स जो है देश के लिए,
0: जब कहीं देश पर आपदा आती है, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं लैंडस्लाइड्स आ गए, तो उसमें जब रेस्क्यू मिशन होते हैं तो उसमें भी हमारे इंजीनियर्स का काफ़ी काम होता है। जब हमें दुर्गम इलाकों में हम जाते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हम भारत की जनता के प्रति या बाहर के देशों में हम जो भी फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें वो टाइम से दें, ताकि इंसान को इंसान की जो ज़रूरत महसूस होनी चाहिए उसमें हम एक भागीदार बन सकें।
1: जी, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा हमारे ऑफिसर्स के लिए कि वो निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है इंजीनियर्स को इंजीनियर्स बनाने में। ऐसे में मिलिट्री इंजीनियर्स भी उनकी लगातार अपने सर्विसेज दौरान ट्रेनिंग चलती होंगी, ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनकर वो अपने आप को सशक्त करते हैं कहीं ना कहीं कि क्या कुछ नया चल रहा है, क्या कुछ नया किया जा सकता है। तो आपके साथ भी लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रहा,
0: ये सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बिकॉज़ देश में इतने विकल्प हैं कि आप सोचते हैं कि आप ही कर रहे हैं। आपने लड़ाई है अपने एक दुश्मन से जीतनी है और वो भी अपने तरफ अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी तकनीक के द्वारा कोशिश में रहता है कि आपसे अच्छा आ सके। जब तक आप उसकी सोच को विफल नहीं कर पाएंगे, और वो होगा जब तकनीक में आप बकाया आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और उससे बेटर हासिल करेंगे, तभी आप जंग को जीत पाएंगे। सो आने वाले समय का जो दौर है वो एक फिजिकल लड़ाई है और एक है जो तकनीक के द्वारा जीते जाने वाली लड़ाई है, और हम देख रहे हैं कि आज बाहर के देशों में, चाहे वो ईरान की लड़ाई चल रही हो, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, उसमें छोटे छोटे देश भी अपनी तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कितनी बहादुरी से और दिमाग से लड़ने की कोशिश जारी है। तो वो शायद चीज़ें हमें भी हासिल करने की ज़रूरत है, हम इससे अलग नहीं रह सकते।
1: जी, तो 100 बातों की एक बात कि एक सोल्जर को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ता है अगर उसे जीत हासिल करनी है, चाहे वो मैदान की जंग में हो या फिर हमारे सिविलियंस की जिंदगियों की बात क्यों ना हो। हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं, वो हमेशा मुस्तैद हैं हमारे लिए। एक बात और यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने खुद बताया था कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आप बहुत खुश हैं कि आपने इंडियन आर्मी के जरिए अपने देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा को दिखाने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से मिलिट्री इंजीनियरिंग की जब बात होती है तो आप एयरफोर्स, नेवी सबके लिए काम करते हैं, आपने भी ऐसा किया है, सभी फोर्सेस के लिए आपने काम

0: करके, उस वक्त खुशी तो बहुत हुई होगी। कहते हैं कि जीवन ना एक चक्र की तरह है, कभी कभी जहाँ छूटता है वही जिंदगी को ले आता है।
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज यू नो एक व्हेन यू आर यंग आप कोशिश करते हैं कि आप वहीं जाना चाहें जहाँ पर आपकी यू नो आप जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार भगवान के तरीके अलग होते हैं। तो शायद वो यू नो मुझे पायलट बनाने से किसी तरह से वंचित किया, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल के दौरान में एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ खूब जमकर काम किया और एक ऐसी फीलिंग आई कि हम उन्हीं का एक हिस्सा हैं। चाहे हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई कार्य हो या कहीं भी हो, तो एयरफोर्स के सुविधाएं हमें मिलती थी और अच्छा लगता था जब हम उनके जहाज़ों में बैठकर दूर दराज के क्षेत्रों में देखते थे कि भाई कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है इंजीनियरिंग की, जिससे उनको सहूलियत मिलेगी और हमारे जो देश के सिपाही हैं उनके कार्यशैली में एक क्षमता बढ़ेगी जिससे जिसका हमें काफ़ी गर्व है। तो हमने काफ़ी अच्छे बड़े बड़े रनवे बनवाए, टैक्सी ट्रैक्स बनवाए, एयरपोर्ट्स हवाई जहाज की जो सुविधाएँ हैं वो काफ़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाई, जिनकी वजह से आज हमारी सेनाएँ वो सब हासिल कर पा रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है।
0: एक बात और, क्या मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको दूरदर्शिता प्रदान करता है? क्योंकि कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासतौर मिलिट्री इंजीनियर के लिए, क्योंकि वो सशक्त कर रहा है फोर्सेस को, उसके लिए अनफोर्सीन फैक्टर्स को ध्यान में रख कर कुछ नया ईजाद करना कितना महत्वपूर्ण होता है?
1: बहुत दुरुस्त आपने सवाल किया और ये चीज़ें बहुत ही कारगर हासिल होती हैं जब आप अपनी इंजीनियरिंग के यू नो ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ का एहतियात करते हैं जिससे हमारे पूरे फोर्सेस को एक अच्छा मौका मिलता है। और जो कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान जो कभी हमने सोचे नहीं थे, हमें जब ऐसे टास्क मिले तो क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग की नॉलेज और हमारे जो लोगों ने हमें सिखाया वो इतनी कामयाब हुई कि हमें खुद सोच कर अच्छा लगा कि हमने सही किया, जो चीज़ें हमने सीखी और हम अपने देश के काम आ सके।
0: जी, सबसे बड़ा जज्बा तो एक फौजी के लिए यही होता है कि वो अपने देश के लिए काम कर रहा है अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपने देश प्रेम से, और शायद इस सुख से बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। जीवन के 40 वर्ष आपने भारतीय सेना को दिए हैं, तो जब पीछे अतीत के पन्ने पलट कर देखते होंगे, बहुत सारी बातों को याद करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं एक सुखद सांस उसको आप रोज भरते होंगे और अपने कार्यकाल को जो आपने जिया है उसे जरूर याद करते होंगे।
1: नहीं, अच्छा लगता है, बिकॉज जो आपकी बचपन की उम्मीदें थीं और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फौज में हो या ना हो, हर इंसान एक हर नागरिक इस देश का अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है। लेकिन हमें एक सौभाग्य मिला कि हम काफ़ी नज़दीकी से अपने देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की, काफ़ी कुछ कर पाए, काफ़ी वर्क इन प्रोग्रेस है जो आने वाली जनरेशन से वो करेंगी, बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारी सिखलाई है, जो हमें बताया जाता है कि देश के लिए तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो है नाम, नमक और निशान। नाम है आपकी अपनी पलटन का, आपके अपने जिस यूनिट में आप काम करते हैं, रेजिमेंट हैं, और उसको आप कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। एक सैनिक यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ता है कि उसके किसी भी कृत्य से उस गौरवशाली नाम पर कोई आँच ना आ जाए। फिर वो नमक की बात करता है, जब जहाँ पर वफादारी और कर्तव्य निष्ठता काम आती है, और जिस चीज़ जो नमक आप खाते हो उसका यह विश्वास का बंधन है जो सैनिक को वर्दी, कमान और अपने साथियों से कभी विश्वासघात ना करने की प्रेरणा देता है। निशान हमारे झंडे की बात होती है, यहाँ राष्ट्रीय तिरंगे रेजिमेंट के अपने झंडे और उसके इंसिग्निया का प्रतिनिधित्व करता है। निशान को हमेशा ऊंचा रखना देश के लिए एक संप्रभुता और रेजिमेंट के युद्ध समान, जो जिसको हम बैटल ऑनर्स बोलते हैं, कि रक्षा का एक संकल्प है जो कि हमारे रग रग में भर दिया जाता है। और यह एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके काम आती है, चाहे वो पीस स्टेशन हो चाहे युद्ध का क्षेत्र हो। तो तीन चीज़ें हमेशा याद करें, नाम, नमक और निशान।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो हम अपने श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम में, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 इस नंबर पर। और आज हमारे साथ हैं मेजर जनरल अशोक कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल से आपको नवाजा गया है आपके योगदान के लिए, और जिस तरह से आपने 40 वर्षों तक

0: आप सभी का पुनः स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार, AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से आप अलंकृत हैं। और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मेजर जनरल अशोक कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल अशोक कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि हम जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमेशा चाहता है कि वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आप भी सेना में रहते हुए अलग अलग पोजिशंस पर आगे बढ़ते गए और कहते हैं कि जब आप ओहदे में आगे बढ़ते रहते हैं, आपको हाईएस्ट पोजीशंस मिलती हैं, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत सारी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे आपने कार्य किए, लेकिन इन सब पोजीशंस में काम करने के साथ साथ कोई एक ऐसी चीज थी जो हमेशा एक जैसी रही और साथ चली 40 वर्षों। क्या वो एक ऐसी फीलिंग थी, क्या वो ऐसी बात थी जिसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा? भले ही ओहदा बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, लेकिन वो फीलिंग जब ज्वाइन किया था फोर्सेस तब भी वैसी थी, और जब फोर्सेस छोड़ी तो आज भी वो बात जिंदा है, आपके दिल में पेवस्ट है।
1: जब आप किसी भी महकमे में जाते हैं, करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एहसास है वो, खासकर जो फौज का महकमा है, वो एक आपको ऐसी उम्मीद देता है कि ये आप इसी को बिलोंग करते हो और इसी में आप बसते हो, और वो जो चीज़ है वो आज भी ऐसा लगता है कि आप आज भी फौज में हैं। भले ही वर्दी नहीं पहनी है, लेकिन एक एक एक एहसास होता है कि मैं इसी में जिया हूँ और मैं इसी में मरना चाहता हूँ। दूसरा जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें लगता है फौज से, एटलीस्ट मुझे सीखने को मिला है, कि आप जब से फौज में आते हैं और जाते हैं, हमेशा ये सीखने को मिला कि आप अपने जो जिनकी वजह से आप वहाँ तक पहुँचे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओहदे के अधिकारी हैं, बट जो जवान हैं, जो सबसे नीचे वाला तबका है, जो आपकी तरफ देखता है कि ये हमारा साहब है और बिना कुछ कहे आपस में हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो एक ऐसी उम्मीद रखता है जिसमें आप बिना बताए, चाहे वो लड़ाई का मैदान हो चाहे अदरवाइज़ हो, आप उनकी उम्मीदों पे अगर खरे उतरेंगे तो आप वास्तविकता में आपने अपने जीवन को कुछ कर दिखाया है। और वो उम्मीद बिना बताए, बिना बोले हुए अगर आप कर पाते हैं और उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, तो वो एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके साथ में होना चाहिए। कई बारी आपके जवान आपके लिए इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो शायद आप उसे भूल ना पाएं, एक ऐसा कुछ उसकी उम्मीदों पे खरे उतरें, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद करता है। और आज भी हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए, उनसे जब बातचीत होती है तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और बताते हैं कि हमने उनसे क्या सीखा और उन्होंने हमें क्या सीख दी। एक छोटा सा उदाहरण था, जब मैं फौज में गया तो पहाड़ों के इलाके में थे, हमारे पास गाड़ियाँ थीं, तो हमने गाड़ी चलानी अपने एक सिपाही से सीखी। उसने हमें कोशिश की कि जो ट्रेनिंग है वो दे पाए, और गाड़ी चलते समय पहाड़ के स्लोप पर रुक गई, तो उसका नाम मुझे याद है, आज भी सिपाही ओम प्रकाश हुआ करता था। और वो गाड़ी रुकने के बाद में वो बाहर निकला, और उन दिनों में हैंडल मार के गाड़ी को स्टार्ट करते थे, वो गाड़ी इतनी ज़ोर से हैंडल लगा कि गाड़ी उछल के और नीचे रोल होनी शुरू हो गई। तो हमने एक नाले के साइड में गाड़ी उल्टी होके चारों पहिए ऊपर और गाड़ी पलट गई। तो ओम प्रकाश का पहला वाक्य था कि लेफ्टिनेंट साहब आप घबराइए ना, हम ये जिम्मा अपने सर पर लेंगे। हमने कहा ओम प्रकाश ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी हमारी वजह से गिरी है तो हम जिम्मेवार हैं, तुम बस ये करो कि वहाँ से जाके कोई हेल्प लेके आओ। तो वो हादसा एक ऐसा हादसा था जहाँ पर आपका सिपाही आपके लिए आपको आँच नहीं आने देता है और कोशिश करता है कि मेरा जो साहब है वो हमेशा सर्वोपरि रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप सीखते हो कि यदि आपने यू नो ऐसे दौरान में आप उनके साथ में खड़े हो, ज़िंदगी भर उन चीज़ों को याद रखता है। और आज भी जब हम पुरानी चीज़ें बातें याद करते हैं तो बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ऐसे किया था, भले ही वो कुछ अपना प्रमोशन नहीं मांगता है या अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं मांगता है, लेकिन जो उसकी सच्चाई है और उसका जो काम करने का तरीका है, वो उसके साथ में आप ज़िंदगी कुछ ऐसे असूल सीखते हैं जो आपके दिल को हमेशा छू जाते हैं, और आप समझते हैं कि एक यू नो सबसे बड़ा बड़ा जो आदर है वो एक इंसान का इंसान के प्रति प्यार और उसकी एक ऐसी गरिमा है जिसको अगर आप बरकरार रखें तो वो ज़िंदगी भर आपके शायद काम आती है। भले ही उस मोमेंट में आप शायद कुछ मिस कर जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें आपको सोच के अच्छा लगता है। एंड उन्हीं उम्मीदों के साथ में हम जीते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी ऐसा ही कुछ सिखा पाएं।
0: जी फौज की खास बात मुझे ये लगी कि जब भी हम इस प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स में आप जैसे ऑफिसर से बात करते हैं कि फौज में कोई अकेला नहीं है, हमेशा किसी हर किसी के साथ हर कोई है, ऐसा नहीं एक है, हर किसी के साथ।

0: हर कोई है, और ऐसे में जब आप अपने परिवार से दूर है तो आपको लगता है कि मेरा कौन सा ऐसा काम था जो मुझे पता नहीं लगा और वो हो भी गया, शायद एक बड़ी खूबसूरत बात है,
1: खूबसूरत चीज है। और आप जब आप आगे सरहद पर अकेले रहते हैं, अकेले मतलब आप अपने फैमिली से परिवार से दूर होते हैं, आपके जो जवान हैं वो आपको ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं जब आपको महसूस नहीं होते, और ऐसा महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग आपके साथ में बकाया हैं, वो आपका उतना ध्यान रखता है, शायद आपका परिवार भी उस मंजर में शायद इतना ध्यान ना रखे, और ये छोटी छोटी चीज़ें जब बनकर आप एक साथ सोचते हैं तो वाकई एक परिवार का एहसास होता है। और एक फ़ौज में जो सबसे अच्छी सिखलाई है कि आप लास्ट मैन, यू नो, यू हैव टू टच ग्राउंड विद द लास्ट मैन ऑन द फील्ड, यू कांट लीव एनीवन बिहाइंड। लड़ाई के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, आपका जवान क्षतिग्रस्त होता है, जब तक हम उसको निकाल कर सुरक्षित जगह पर नहीं लाते हैं, हम अपना कार्य शैली को सफल नहीं समझते हैं। और कई हमारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जहाँ हमने एक टुकड़ी के साथ में एक जीत हासिल करनी है, अगर उसमें आप समय से पहले आ गए लेकिन एक बंदा आपका अभी तक पीछे है, जब तक वो शामिल नहीं होगा आपकी जीत जीत नहीं मानी जाएगी। सो ये एक ऐसी मंजर है जिसको हम सीखते हैं। उसके अलावा जब कोई हमें कलेक्टिव टास्क मिलता है और हम में से कोई बंदा नहीं कर पाता है, तो उसको भी जब तक हम साथ में लेकर उस जीत को हासिल ना करें, वो जीत जीत नहीं मानी जाती है।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ना केवल कृतज्ञता हम फौज से सीखते हैं, हम टीम स्पिरिट, एकता भी हम फौज से ही सीखते हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारे युवा ये कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी माता पिता हैं वो गर्व से उनका सीना पहले ही चौड़ा हो जाता है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा फौज में जाना चाहता है। और यही फौज की खूबसूरत बात है कि वो सभी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और हर युवा यही चाहता है कि मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम सेनाओं को, सेनाओं में भर्ती होकर दिखाऊं। तो ये जग आपके लिए है, सेनाएं आपके लिए हैं, अब आप उसे कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।

0: संदेश टू सोल्जर्स आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल अशोक कुमार। एक सिपाही के लिए, एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, लेकिन जब उसके कार्य को, उसकी जिम्मेदारियों को, उसकी कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया जाता है तो उसके लिए सबसे सुखद पल होता है। आपके लिए भी बहुत सुखद रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया वो आपके आपके शोल्डर्स पर थी, आपकी ड्रेस पर थी, आपकी यूनिफॉर्म पर थी। अति विशिष्ट सेवा मेडल जिससे आपको नवाजा गया आपके सर्विसेज के लिए, आपके योगदान के लिए। तो उस वक्त वो जो पल होता है, वो पल आपको क्या क्या याद दिलाता है? क्या आप अतीत में चले जाते हैं या सिर्फ याद करते हैं कि आज ये जो पल है, ये पल इस वजह से आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने बस अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखा था, इसलिए हुआ।
1: इंसान की एक फितरत है कि वो जब भी कोई काम करता है तो वो एक अवार्ड और रिवॉर्ड सोचता है। कई बारी वो अवार्ड शायद उसे तब नहीं मिलता जब वो मोस्ट हम्बली उसको डिज़र्व करता है। कई बारी अवार्ड जो हैं वो ऐसे वक्त पर मिलते हैं जब आपके अंतिम चरण में आप इतना कुछ काम करके गवर्नमेंट आपको रिकग्नाइज करती है तो एक अच्छी फीलिंग आती है। इंसान इस दुनिया में जीता है कुछ कारणों से, जिनमें से वो उम्मीद करता है कि उसके काम किए गए कार्यों का एक एक उसको शाबाशी दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, लेकिन जब मिलती है तो एक अच्छा एहसास होता है। और मोर देन आपके अपने लिए वो एक एहसास, आपके बच्चे जो आपके साथ में आपको यहाँ तक पहुँचाने में जिनका गौरव रहा है, आपके पिताजी, आपके माता जो जिन्होंने आपको बड़े होते हुए देखा और उम्मीद करते हैं कि उनका उनके बेटे को कुछ ऐसा अवार्ड मिला जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो एक काफ़ी गौरव और गर्व की बात होती है। सो जैसे हम कहते हैं कि रिसीविंग द मेडल वॉज अ डीपली हम्बलिंग रिकॉग्निशन, एन ऑनर इज नेवर अ रेस्टिंग पॉइंट, इट इज़ अ रीअफर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट दैट पीपल हैव इन यू। चाहे वो आपके जवान हों, चाहे आपके बच्चे हों, आपके माता पिता हों, आपके रिश्तेदार हों, सबको एक उम्मीद रहती है। और इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द डेडिकेटेड सोल्जर्स एंड द टीम्स हुज कलेक्टिव एफर्ट मेड दैट कॉन्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। तो सभी का इसमें एक विश्वास था, एक ऐसी कोशिश थी कि सब ने मिलकर आपको उस पैगाम तक पहुंचाया जिसका आप खुद जिम्मेवार तो थे, लेकिन आपके पीछे जो लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनका मैं शुक्रगुजार हूं। एंड द अवार्ड रीइंफोर्स्ड माय कमिटमेंट टू कंटिन्यूस ड्यूटी इंश्योरिंग दैट एवरी सब्सिक्वेंट डिसीजन प्लान एंड मेंटरशिप एफर्ट रिफ्लेक्टेड द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ द अवार्ड दैट आई गॉट। सो माय सिंसियर थैंक्स टू एवरीवन who over the years was there with me in getting and achieving what I finally achieved.
0: जी बहुत खूब, बहुत खूब। ग्रैटिट्यूड इज़ द वे ऑफ लाइफ और ज़िंदगी जीने का सलीका इस बात से पता लगता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं। और आपकी कृतज्ञता फोर्सेस की तरफ, अपने अवार्ड्स की तरफ और आपने जितने भी कार्य किए हैं आज तक उनकी तरफ आज इस शो के माध्यम से हमें सुनाई दी और कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी प्रेरणा आपसे मिली। एक व्यक्ति जिसका जिक्र ना हमने अभी तक नहीं किया, या बेटर हाफ, शायद उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि कहते हैं कि एक ऑफिसर को ऑफिसर एक माता पिता बनाते हैं, उसके अंदर वो संस्कार उसमें जीवंत रखते हैं, हमेशा उनके साथ भी, उनके बाद भी हमेशा रहते हैं, लेकिन स्पाउस उन्हीं संस्कारों को आगे लेकर चलती है।

0: आपके पीछे बहुत बार उन्होंने घर को संभाला होगा, कंप्लेन भी नहीं की होगी, लेकिन इससे पहले ये मुझे बताइए कि आप उनसे मिले कैसे थे?
1: आपने एक अच्छा सवाल पूछा. बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज़ अ वूमन, एंड अनडाउटेडली इट हैज़ बीन माई वाइफ हुज़ नेम इज़ प्रीति. और जो गुड पार्ट है वो ये है कि हमारे जो दोनों के पेरेंट्स थे वो फौज में कोस्टमेट्स थे जो नेवी में साथ में आए, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे. और भाग्यशाली रहे कि हम आपस में हमारी शादी हुई और हमने अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जिया. और जो भी मैंने हासिल किया उसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरी बेटर हाफ प्रीति का था, एंड शी इज़ रियली वर्कड हार्ड फॉर वॉट एवर आई एम टुडे एंड माई चिल्ड्रन हु निहारिका एंड आर्यन हु बीन वंडरफुल एंड दे स्टूड लाइक रॉक बिहाइंड मी इन एवरी यू नो गुड और बैड पैटर्न्स ऑफ लाइफ एंड इन द एंड इट वॉज एन अचीवमेंट विच आई कांट थैंक लेस टू दीज पीपल. एंड प्रीति इज नाउ रिमेन्स माई बिगेस्ट क्रिटिक, but the kind of lessons that she's given me is something which is, you know, which I won't have done on my own. And main shukrgazar hu ki mujhe bhagwan ne achhi bacche diye, achhi patni di, maa baap parents ne jo hausla diya jiski wajah se main yahan tak pahuncha. Aur ye apne aap mein ek achievement hai जो हर माँ बाप अपने बच्चे में देखता है, हर वाइफ हर हस्बैंड अपनी वाइफ में देखता है, और अपने बच्चों को आँख में आँख मिलाकर उम्मीद करता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा और आज यहाँ तक पहुँच पाए.
0: बहुत खूब. और एक ग्रैटिट्यूड हमारी तरफ से तमाम लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं और आपको सल्यूट कर रहे हैं. पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जय हिंद यहाँ पर लिखकर भेजा है. बीके दत्त कॉलोनी से शबनम ने. आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से प्यार देते हैं हमारे फौजियों को काबिल तारीफ है. संदेश यहाँ पर भेजा है नुसरत अली ने, और संदेश हमें हमारे पास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से भी आया है जोया का, और ये आपके करेज को सलाम कर रही हैं यहाँ पे आहिल अली बीकानेर से. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त. यश शिंदे ने हमें संदेश भेजा है मुंबई से, और संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं. ये हैं धारा शिव महाराष्ट्र से, यशवंत इनका नाम है. और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. मोहम्मद इद्रिस ने संदेश भेजा है, और संदेश भेजने वाले बहुत से दोस्त हैं. कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम अलग सेशन आपके लिए ज़रूर आयोजित करेंगे. यहाँ पर मध्य प्रदेश से अजय का हमारे पास संदेश आया है. बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का. हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेजर जनरल अशोक कुमार जी का. मैं बस एक बात कहूंगी, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, बट वंस अ मिलिट्री इंजीनियर इज आल्सो अ मिलिट्री इंजीनियर फॉरएवर. ये बात सच है ना?
1: बिल्कुल दुरुस्त है.
0: और इसीलिए इन्होंने काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ये कहेंगे कि इनकी इंजीनियरिंग आज तक कायम है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कहां कैसे इन्होंने आपके लिए आपका कोई सपना साकार कर दिया. अगर मन में ये बात आए तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं हमारे ये जो फौजी हैं, फौज में रहकर भी और फौज के बाद भी आपके लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं. अब ये एक नगमा एफएम रेनबो की तरफ से, हम एफएम रेनबो का क्रेडिट ले रहे हैं, हम प्रीति मैम को ये डेडिकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका एक बार फिर से.
1: थैंक यू सो मच. जय हिंद.
0: जय हिंद.

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

सोनू निगम और निंदी कौर की आवाज़ की अमला पलकर दीवाना का टाइटल ट्रैक आप लोगों ने सुना। 5:06 का वक्त हो गया है, लव यू जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है इस गाने के साथ और मैं हूँ आप लोगों के साथ में शिल्पा। गुरुवार की शाम जो है मस्त वाली और ऐसे ही गाने जो है वो आपके लिए आ रहे हैं और साथ में म्यूजिकल गेम भी आ रहा है। दो धुनों को मिलाया गया है, आपको उन दोनों गानों को जो है वो पहचानना है और बिना देरी किए धुन आपकी तरफ बढ़ रही है।

बताइए कौन से दो गाने जो है वो मिले हुए हैं 8656-1071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आई होप काफ़ी लंबी धुन जो है वो मैंने आपको सुनाई है, ऑलमोस्ट 40 सेकेंड, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये बड़ी हेल्प करता है, क्योंकि अब अगर कम ड्यूरेशन रहता है तो वो ऐसे रजिस्टर होने के लिए समय लगता है ना, तो बड़ा वाला सा शुरुआत जो है वो बड़ी ड्यूरेशन के साथ की है। चलिए फिलहाल मोहित चौहान

आ रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म का गाना आप लोगों के लिए प्ले हो चुका है, इरशाद कामिल का लिखा हुआ है, प्रीतम साहब की कॉम्पोजिशन पर। सुने लौट कर आए यही म्यूजिकली लस्ट पर।

ये जो तीनों है ना वो सच में ऐसा लगता है मुझे कभी कभी एकदम मास्टर है म्यूजिक में ऐसे. एक गाना एक्चुअली में टफ है पर गेस कर लिया है. आप बताइए 8658661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. और अभी के लिए के पलक मुझाल की आवाज़ में लापता ऑलरेडी प्ले हो चुका है एक था टाइगर फिल्म से. इसे सुने और लौट कर आएं.

क्या बात है, बहुत सारे लोगों के जवाब जो है वो आए हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ वही तीन नाम है जिन्होंने पहचाना है गाने को। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले गाना जो है वो बताया जाए या फिर अगली धुन जो है वो सुनाई जाए, क्या किया जाए बताएं आप। वैसे इस बार ना मैंने थोड़े से मुश्किल वाले गाने लाए हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था कि अब सब जो है वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो मतलब अब थोड़ा एक लेवल जो है वो बढ़ना चाहिए ना, अगले इस पे जो है वो हम पहुंचने चाहिए, इसलिए इस बार जो है वो थोड़ा कठिन लग रहा होगा। कौन से दो गाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पहले आपको अगली धुन जो है वो सुनाती हूँ, और इसमें ड्यूरेशन चूंकि कम प्ले होने वाला है इसलिए गौर से सुनिएगा। और इसमें एक जो गाना है वो बहुत रेयर प्ले होता है, इट्स अ हिट सॉन्ग, हिट गाना है, लेकिन वो बहुत कम प्ले हुआ है, तो ये थोड़ा सा जो है

बताइए कौन से दो गाने जो है वो इसमें है। 8 5 6 6 1 0 7 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट से मैसेज करें। और वैसे राइट आंसर जो है वो आया है प्राशिक बोरकर का, इसके अलावा नितिन जी का और एक और राइट आंसर है राकेश माथुर जी का। यस, ये तीन लोगों ने सही जवाब जो है दोनों गाने इनफैक्ट एक साथ मतलब पहचान लिए। ये वाकई में कमाल की चीज़ है। तो अभी जो है वो दो गाने वापस से मैं प्ले करूँगी और उसमें से एक का म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा ऐसा ओझल होगा आपके कानों से और फिर देखिए आपको कैसे समझ में आता है। देखो एक तो आ ही रहा है यार, मतलब तारों का चमकता चेहरा तो वो आ ही रहा है। अब ये देखिए ये वाला कौन सा है। सुन मेरे सर की आवाज़ में, सुने कौन सा गाना है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Musically Yours 107.1 FM Rainbow पर 5:31 का वक्त हो गया है. लव यू जिंदगी पर शिल्पा के संग आप बने हुए हैं और बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि एक गाने की धुन ना वो अपने आप में एक्चुअली बहुत ऐसे स्लो भी है और उसका ये भी मतलब एकदम ऐसा शुरू होता है ना जब गाने कुछ गाने होते हैं जिनकी बीट्स थोड़े कम रहते हैं तो वो है. और एक राइट आंसर आया है और वो इसीलिए आया है क्योंकि वो रेयर गाने बहुत सुनते हैं. यस, मैं नाम उनका बताऊंगी कौन से हमारे लिसनर हैं, लेकिन उससे पहले एक बार और ये धुन आपको सुनाई जाएगी. और कोशिश करिए, इस बार मैं एक काम करती हूँ आपकी सुविधा के लिए, एक गाना जो बहुत ऑलमोस्ट सबने जो है वो गेस कर लिया है उसका लेवल थोड़ा सा कम रखती हूँ और दूसरे वाले का थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, तो शायद जो है वो पहचानने में आसानी हो.

बताइए कौन से दो गाने हैं। मैंने काफी ऐसे चीटिंग टाइप की फीलिंग जो है वो मुझे आ रही है, पर लेकिन आप सबके लिए जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा फेवर जो है वो बनता है। तो 8658 6 1 0 7 1 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इनफैक्ट और भी जो मास्टर लोग हैं उन्होंने भी जवाब दिया है, मैं देखती हूँ कि किन किन लोगों ने राइट आंसर जो है वो भेजा है। और इस गाने के उस पार जो है देखती हूँ, वरना एक छुटकू सा गाना प्ले होगा और उसके बाद सही जवाब जो है वो बता दिया जाएगा, नहीं तो हम इसी धुन पे जो है वो अटके रहेंगे और अगली धुन सुन ही नहीं पाएंगे, है ना। तो 8658 6 1 0 7 1 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेजें। और वो जो दो गाने पिछली बार मिलाए थे ऐसे जकड़े थे, उसमें से दूसरा गाना जो है वो ये वाला है, सुने और लौट कर आए म्यूजिकली उस पर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: म्यूजिकल ईयर्स ऑन 7.1 एफएम रेनबो पर 5:42 का वक्त हो गया है और लव यू ज़िंदगी चल रहा है और दो ही लोगों के सही जवाब जो है वो आए हैं. एक सारिका जी ने जो है वो राइट आंसर पहचाना है और एक प्रणव शिंदे जी ने. और कौन से दोनों गाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगली धुन आप लोगों के लिए आ रही है. इसे थोड़ा आसान इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अभी ऐसा मुझे लगा कि एक गाना जो है वो बहुत लोगों के लिए टफ जो है वो हो रहा है, तो ये दोनों गाने बहुत बार प्ले हुए हैं ना, तो सुने क्या बोलते हैं.

बताइए कौन से दो गानों की धुनें जो है वो मिली हुई है। नंबर हमारा है 8857 6 6 1 0 7 1। और जो दो गानों में से एक नहीं पहचान पा रहे थे ना आप, वो ये वाला है। इसकी ना पूरी अलग से मैं धुन प्ले इसलिए कर रही हूँ ताकि एक बहुत आई थिंक बहुत अरसे पहले यार आई थिंक प्ले हुआ होगा, हालांकि हिट है ये गाना, मेरे शो पे बहुत कम प्ले जो है वो हुआ, इनफैक्ट रिक्वेस्ट भी नहीं आती है। पर प्रणव शिंदे जी ने मैसेज करा कि ये उन रेयर सॉन्ग्स में से है जो वो सुनते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनके लिए आसानी जो है वो हुई इसे पहचानने में। यस, तो वो सुने कविता जी की आवाज़ में है और

हरी हरन साहब और कविता जी की आवाज़ में गुलाम ए मुस्तफ़ा इस फिल्म का गाना है जिसमें रवीना टंडन और नाना पाटेकर थे। यस, 5:48 का वक्त हो गया है। लव यू जिंदगी पर बने हुए हैं आप सभी और यहाँ पर एक म्यूजिकल गेम जो है वो चल रहा है। गानों की धुन वाला दो गाने मिले होते हैं, आपको जो है उन दोनों गानों को पहचानना होता है और मुझे मैसेज करना होता है 8656-1071। और हमेशा की तरह एक गाना वो होता है कि एक ओवर हो जाता है और एक का म्यूज़िक जो है वो पीछे जो है वो रह जाता है, और मैं दोनों गानों का जो लेवल होता है वो इक्वल रखती हूँ। मैं बेईमानी नहीं करती। मुझे एक मैसेज आया कि मैडम एक का आप कम रखते हो, ऐसा नहीं।

मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, बल्कि आज के शो में मैंने आप के लिए जो है आसान करने के लिए बल्कि थोड़ी सी बेईमानी ऐसी की थी कि मैंने जो नहीं पहचान में आ रहा था उसका लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया था कि गेस कर ले सारे लोग। लेकिन यस, मैं दोनों का लेवल जो है वो इक्वल रखती हूँ। अब पहचाने कौन से हैं।

0: बताइए, 8-6-5-8-6-6 मेरे ख्याल से ना, मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि धुने जो है वो गड़बड़ प्ले कर दी है क्या, है ना? ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी? नहीं, मुझे बताइए मैसेज करके, 8-6, मैं, मुझे भी पता लगे कितना गौर से जो है वो सुना जा रहा है। 8-6-5-7-6-6-1-0-7-1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक जो है वो लेते हैं और फिर एक बढ़िया सा गाना आप लोगों के लिए यहाँ पर आने वाला है, तो कुछ नहीं करना है, बने रहना है। मीनवाइल जो है उतने सेकेंड्स में मुझे मैसेज करिए तो मुझे पता लगेगा कि कितना गौर से जो है वो सुना जा रहा है।
1: Great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग,
3: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
2: जो छू लेते हैं आपका मन।
3: मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए,
2: हर आरजे का है एक अलग ही रंग।
3: ओ रंग रे
2: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से जो पहुँचती है आपके दिल तक, ओनली ऑन FM रेनबो।
0: यस, ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 पर आप बने हुए हैं, लव यू जिंदगी चल रहा है और ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया है कि आप सारे लोग जो है वो ध्यान से सुनते हैं मुझे। हालांकि कुछ लोगों को समझ नहीं आया अभी भी, लेकिन चलो ऐसे कभी कभी सिस्टम में बैठे तो गड़बड़ी जो है वो हो जाती है ना। तो अभी वापस से वो दो गाने जो है वो आ रहे हैं जो पिछले इसमें सुनाए थे मैंने, और 3 आई थिंक राइट आंसर जो है वो आ चुके हैं, और बताएं कौन से हैं।

मुझे ये लगता है कि वो बर्डिंग्स जो है वो शुरू ना हो जाए, नहीं तो मतलब गाना ही जो है वो प्ले हो जाएगा। अब बताइए 8 5 7 6 6 1 0 7 1 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ये ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आपने पिछले में ये वाला गाना गेस किया था और इतना ऐसे कन्फ्यूजन मुझे हुआ, तो कभी कभी हमें तो हो ही जाता है, मतलब इतने सारे गानों के बीच में हम बैठे होते हैं। हाँ, लेकिन आपको भी हो सकता है। यस, तो ये वाला गाना था जो पिछले उसमें दो गाने मिले हुए थे ना, एक हमने अभी सुना था नाना पाटेकर सर की फिल्म का, और दूसरा वाला गाना ये था। चलिए बताइए, और आशा जी और कुमार शानू साहब की वॉइस को इंजॉय करिए और फिर लौट कर आइए यही म्यूजिकली योर्स पर।

ऑलराइट 107.1 एफएम रेनबो पर बने हुए हैं आप सभी, और दोनों गाने जो है वो कमाल के हैं, ये देखो और इनको अलग अलग सुने तो ऐसे फट से समझ जो है वो आ जाते हैं। देखो ये वाला गाना जो है

वो भी आ जाता है, कौन सा है, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। और दूसरा वाला जो है वो तो बहुत ही क्लियर आ जाता है, कौन सा सुना जाता है, ये वाला सुनते हैं। चलिए, राकेश माथुर जी, प्राशिक बोरकर, पंकज मोहर जी, सारिका जी और नितिन जी, इन सारे लोगों ने दोनों गाने जो है वो पहचाने हैं। बाकी एक गाना पहचानने वाले बहुत सारे लिसनर हैं हमारे, और सबके नाम जो है वो अंदाज़े बयां में जो है वो आएंगे। और ठीक 6:05 पर आपके लिए समाचार होंगे नागपुर केंद्र से, 6:15 पर मुलाकात होगी यस अंदाज़े बयां के साथ। और फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए और बने रहिए म्यूजिकल योर्स पर।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

आशा जी और जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में दिल कहीं होश कहीं इस एल्बम से ये गाना सुना आप लोगों ने। 6:23 का वक्त हो गया है, अंदाजे बयां की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूँ आप लोगों के साथ में शिल्पा, और जब मैं आती हूँ तो हम खेल खेलते हैं बढ़िया वाले म्यूज़िक वाले और दिमाग लगाने वाले कुल मिलाकर। तो अभी भी जो है वो थोड़ा सा दिमाग की नसों को हिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्लिष्ट हिंदी जो है वो आने वाली है, और इस गेम के ज़रिए मेरी अंग्रेजी नहीं, मेरी हिंदी जो है वो तो अच्छी हुई है, लेकिन बहुत सारे लिसनर्स का भी कहना होता है कि इससे उनकी भी बेहतर जो है वो होती जा रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है इसको कंटिन्यू जो है वो करना चाहिए। और एक ख्याल तो मुझे ये भी आया कि क्यों ना इसे थोड़ा संस्कृत की तरफ जो है वो लेकर चले, क्या पता हमें जो है वो रेडियो के माध्यम से जो है वो संस्कृत आने लगे, नेवर नो। तो अपने सजेशन जो है वो मुझे भेजिएगा, तो अगर इसको और थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ाना होगा तो हम बढ़ाएंगे। चलिए अभी के लिए एक गाना आ रहा है आप लोगों को,

कोई भी खेल लेकर आओ, उसमें सब ने उस्तादी जो है वो कर ली होती है। 6:37 का वक्त हो गया है। अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज़ में गाना सुना, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ था, जतिन ललित की कॉम्पोजिशन पर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म से अंदाज़े बयां चल रहा है। और ये एक्चुअली में आसान खेल नहीं है, क्लिष्ट हिंदी वाला, कठिन हिंदी वाला कहना चाहिए, लेकिन अब सब जो है वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। राकेश माथुर जी, पंकज मोहर जी, सारिका जी, नितिन जी, संजय दर्शन जी, प्रणव जी, प्रकाश शिंदे जी, ज्योति कुमार और गजानन शिंदे, इन सारे लोगों ने सही जवाब जो है दिया है। गाना जो है वो मैं सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले अगले गाने की लाइंस जो है वो आप लोगों के लिए आ रही है। तो जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है और जिन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, एक खेल हम खेल रहे हैं, जो भी हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं तो उनकी हिंदी जो भी है, जो भी लैंग्वेज है, उसको थोड़ा हमने कठिन करते हैं और आपको सुनाते हैं, और आपको पहचानना होता है कि वो कौन सा गाना है ना। तो मुझे वो भी बताइए कि इसको संस्कृत में किया जाए क्या। जितने मतलब जवाब मुझे भेज रहे हैं सारे, वो ये एक उसमें अपना ओपिनियन जो है वो ऐड करके जो है वो भेजें, क्योंकि शायद इससे डेफिनेटली बहुत फ़र्क मुझे पड़ा है। और हम बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो याद ही नहीं आते, क्योंकि हमने सुने ही नहीं है बहुत अरसे से। तो इसमें जब चूँकि हम कंसिस्टेंसी के साथ बहुत खेल रहे, लगातार जो है वो ये हमारे कानों में शब्द पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहते हैं, तो हमारी ज़ुबान पे भी जो है वो आते हैं। ये मैंने तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करा है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी जो है वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का इस्तेमाल बढ़ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अभी गाने की लाइन्स आ रही हैं कि रूपवती रमणियों को ज्ञात है, ठीक है, रूपवती रमणियों को ज्ञात है कितनी कितनी कूट युक्तियाँ। ये रिपीट है, रूपवती रमणियों को ज्ञात है कितनी कितनी कूट युक्तियाँ, और स्वयं विधाता भी न जाने तो हम कैसे जाने। मतलब इसको ये वो जब मैं हिंट देती थी ना कि इसको किस तरीके से जो है वो क्रैक किया जाता है, ये बहुत ही स्पष्ट जो है वो समझ आ रहा है, अगर पहचान लिया है तो 8657661 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और सबका ध्यान रखना होता है, इसलिए एक आध कोई चीज़ ऐसी लेकर आनी होती है जिससे ऐसे क्लिक होने को जो है वो आसानी हो। हालाँकि शुरुआत का थोड़ा कठिन है, पर आ जाएगा आप लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे। चलिए अभी वो गाना जो जिसका सही जवाब जो है वो आप लोगों ने दिया है यहाँ पर, वो हो चुका है, हर्षित करते अश्रु बहाते हंसाते हो रुलाते हो। बढ़िया गाना है बहुत, अलका जी और अभिजीत दा, वाह फिर से वही कॉम्बिनेशन।

गया है, अंदाज़े बयां पर बने हुए हैं आप सभी। वाह, मज़ा आ गया। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं। और गाना जो है वो कौन सा, उसका म्यूज़िक ना बहुत बड़ा है, तो उसका थोड़ा सस्पेंस रखते हैं जिन लोगों ने नहीं गेस किया होगा, क्योंकि जिन्होंने किया है उन्हें तो मैंने बता ही दिया है कि राइट आंसर है, लेकिन जिनके लिए कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे ना वैसे जवाब भी आए जो मतलब आड़े टेढ़े वो मैच नहीं कर रहे, लेकिन देखो सब अपने हिसाब से जो है वो भेजते हैं, उसमें मज़ा आता है कि भाई किसी ने एक लाइन जो है वो कुछ और समझी। और लेकिन हालांकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो पहचान लिया है कि कौन सा गाना है। ठीक है, वो गाना बड़ा है, तो एक छोटा सा हम कमर्शियल ब्रेक जो है वो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चंक जो है वो म्यूज़िक का मैं आप लोगों के लिए प्ले करूँगी, और उसके बाद किन किन लोगों ने राइट आंसर दिया है उन सबके नाम जो है वो बताए जाएंगे।

शिंदे जी ने, प्रकाश शिंदे जी ने, प्राशिक बोरकर ने, सारिका जी ने, नहीं सारिका जी का नाम तो आ गया, ओके डबल डबल, नितिन जी ने, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और अब यहाँ पे वो गाना जो है वो बैकग्राउंड में प्ले हो जाएगा जिसकी क्लिष्ट हिंदी जो है वो आप लोगों ने सबने पहचान ली, और बड़े मिक्स्ड रिव्यू नहीं, मिक्स्ड ओपिनियन जो है वो आई है कि कुछ कहते हैं हमें संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत एक्चुअली बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, लेकिन होता क्या है कि शब्द ऐसे होते हैं ना कि कहीं ना कहीं पहचान लिए जाते हैं, आप संस्कृत हो और मराठी, उनके बड़े सिमिलर वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ मतलब आ जाती है वो समझ में। तो चलिए देखते हैं, सोचते हैं कि क्या जो है वो अब अगले शो में जो है वो ये क्लिष्ट हिंदी की जगह संस्कृत के शब्द आएंगे या फिर ऐसे ही इस खेल को आगे बढ़ाया जाएगा, देखते हैं। फिलहाल उदित जी और अलका जी की आवाज़ में गाना प्ले हो चुका है लहू के दो रंग, बड़े अरसे बाद जो है वो सॉन्ग इनफैक्ट सुनाई दे रहा है, हाँ बढ़िया है लेकिन अपने दौर का है। अच्छा ठीक 7 बजे जो है वो समाचार होंगे आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम तुमकी गाड़ी आगे बढ़ेगी मेरे साथ ही।

म्यूजिकल यॉर्स 107.1 एफएम रेनबो पर 7:10 का वक्त हो गया है। अभी आप सुन रहे थे समाचार और अब यहाँ पर शुरुआत होती है हम तुम की। ये वो घंटा होता है जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट ली जाती है 8657661071 की हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हालांकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है इतने गाने आ चुके हैं कि पूरे इस घंटे के साथ साथ अगले घंटे भी जो है वो प्ले हो सकते हैं, इतनी रिक्वेस्ट जो है वो आ चुकी है। और आज प्यारे लाल शर्मा जी का जो म्यूजिक कंपोजर है उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले सबकी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और बहुत सुंदर सुंदर गाने जो है उन्होंने हमें दिए हैं लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी ने। तो ऑलरेडी बहुत सारे लिसनर ने उन्हीं के गाने जो है वो भेजे हैं, तो कोशिश करिए कि अगर कोई वो गाना जो उनकी कॉम्पोजिशन का हो वो अगर आप मुझे भेज सकें तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो होगा। तो चलिए शुरुआत जो है वो करते हैं इस गाने के साथ। अमित कुमार जी, कविता जी दोनों मिलकर जो है वो गाएंगे और

प्यारा सॉन्ग है, अलग एनर्जी है इस गाने की, और दोनों की ये खासियत रही है क्योंकि कॉम मतलब साथ में मिलकर उन्होंने म्यूज़िक कंपोज करा, तो बहुत एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने अपने म्यूज़िक में किए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तो चलिए अभी पंकज मोहर जी, गजानन शिंदे जी, इन दोनों की रिक्वेस्ट पर आ रहा है चालबाज का ये गाना, सुने और लौट कर आए यही म्यूजिकल यूज पर।

بدها تجرب تيجي كباس ويقال عبد السلام सात बजकर 21 मिनट का वक्त हो गया है और ये गाना अगर अकेले में सुने तो बिल्कुल ये जो इसमें कही गई है ना बाद की ज़िंदगी और कुछ भी नहीं वो ऐसे एकदम दिल को लगती है और सच में ऐसा लगता है कि वाकई में लाइफ कुछ भी नहीं है. मतलब अच्छी चीज़ें करना, अच्छा काम करना, अच्छे रिश्ते रखना, अच्छा बोलना, एक वो थॉट कहीं आता है और वाकई में अंदर से हिलाता है अगर आप इस गाने को सुकून में सुने तो. यस, और अरविंद कुलकर्णी जी, विरोध सिगनपुरिया जी, मुकेश जी, शीतल जी, सोनू, सुरेश जी, राजपाल जी, पंकज जी, काजल जी, सीमा जी, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर से इन सारे लोगों को ये गाना सुनना था. और प्यारे लाल जी का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोशिश करिए उन्हीं के गाने जो है वो आप भेजें. जिन लोगों ने पहले भेज दिए थे मुझे वो वापस से थोड़ी सी जद्दोजहद करके, मेहनत करके जो है फिर से जो है रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 8658661071 इस नंबर पर. और अब राहुल जी की रिक्वेस्ट पर हो चुका है ऑलरेडी गाना प्ले, जिन्होंने पुणे से मैसेज करा है. सुने कविता जी की आवाज़ और लौट कर आए यहीं म्यूजिकली योर्स पर.

7.1 FM रेनबो पर 7:28 का वक्त हो गया है। हम तुम पर बने हुए हैं आप सभी। और वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है इंडिया वर्सेस हांगकांग के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो 7:30 के उस पार यस आप सुन सकेंगे लाइव कमेंट्री, लेकिन हमारा जो शो है वो ऐप पर आप कंटिन्यू सुन सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं, बस बने रहना है। या अगर आप रेडियो सेट पर ट्यून इन किया है तो आप अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए, न्यूज़ ऑन एयर ऐप डेफिनेटली होगा आपके फ़ोन पर, तो वहाँ पर जो है वो अपना चैनल ट्यून इन कर लीजिए 107.1। चलिए अभी के लिए राकेश माथुर जी की रिक्वेस्ट आ रही है और विजेंद्र जी अकोला से जिन्होंने मैसेज करा है उनकी फरमाइश।

0: कार्यक्रम सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग ऑफ द वुमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026।
2: टॉस टाइम है, सीधा चलते हैं टॉस के लिए।
3: जस्ट

बजकर 40 मिनट का वक्त हो गया है. हम तो उम्र बने हुए हैं आप सभी अनुराधा जी और मनहर साहब की आवाज़ में गाना सुना संजय दर्शन जी की रिक्वेस्ट पर. और अब आ रही है अगली फरमाइश किशोर कुमार की आवाज़ में.

शैलेंद्र साहब की आवाज़, बॉबी फिल्म का गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की कॉम्पोजिशन पर। 7:50 का वक्त। इसके पहले जो गाना प्ले हुआ था वो शुभदा जी की रिक्वेस्ट पर हुआ था और प्रकाश शिंदे जी, प्रणव शिंदे जी की फरमाइश पर ये गाना। और एक नाम मुझसे मिस हुआ है, उन बहुत पीछे शायद चला गया है, उन्होंने भी इस गाने की रिक्वेस्ट जो है वो की थी। और फिलहाल हम तुम चल रहा है, हालांकि सारे लोगों के नाम जो है वो अभी आने वाले हैं। मुकेश जी, संजय दर्शन जी, नितिन जी, पंकज मोहर जी, शुभदा जी, बाबा दादर से गजानन शिंदे, सारिका जी, गोपे झारखंड से मेहर अरोरा, ज्योति कुमार, विजेंद्र जी अकोला से, भूषण सोनावले, राकेश माथुर, अजय साखरे जी इंदौर से, कल्पना राजू उल्लासनगर से, फिरोज सगनपुरिया, प्रमोद जी, प्रणव शिंदे, इसके अलावा

चेतन कुमार, रितेश शेट्टी, सुनील गायकवाड़, अरविंद कुलकर्णी, राहुल जी पुणे से, मुकेश कश्यप महाराज, कीर्तनपुरी गोस्वामी, हितेंद्र दास, बलकरण वर्मा, हीरामणि वर्मा, इसके अलावा इन्होंने अपना एक नाम जो है वो नहीं लिखा है, नहीं, और अर्नुबो आई थिंक मैं नाम इनका सही है, प्लीज़ थोड़ा हिंदी में भी लिखकर भेजिए अपना नाम, बिकॉज स्पेलिंग में कभी कभी जो है वो गड़बड़ होती है। अरुण भीरे, ओके ओके, दो अलग अलग मैसेज हैं, और पहले वाले में नाम लिखा है अरुण भीरे, और दूसरे वाले में कुछ बंगाली नाम मुझे लग रहा है जो शायद मैं उच्चारण सही नहीं कर पा रही हूँ। प्राचिक बोरकर, संजय पाटिल जी, राम प्रजापति, योगेश जी, निर्मला जी, विशाल जी, नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष जी, और पी एस न्यावकर, प्रवीण जी, दिग्दर्शन जी, कविता जी, धनंजय जी, वैदेही और अशोक पाटिल जी, राजेंद्र जुठानी जी, इब्राहिम, रघुनाथ जी, अनिल सरोदे, सुजैन जी, सुरेश जी, श्रेया राउत जी, यशवंत आत्मुते, और बस आई थिंक इतने ही नाम आए आए हो। मैंने किसी का नाम जो है प्रमोद जी, प्रमोद राउत, आई थिंक सारे लोगों के नाम हो चुके हैं। कभी कभी एक आधा नाम अगर रह भी जाए तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि ऐसे होता है ना कि इसके पहले भी जो शो रहते हैं उसके मैसेजेस भी साथ में रहते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है, आगे पीछे भी हो जाता है, छूट भी जाता है, बट पूरी कोशिश रहती है कि हमारे सारे लिसनर्स के नाम जो हैं वो आएँ, बार बार आएँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे शोज़ हैं, एफएम रेनबो है, और ढेर सारा प्यार हम लोगों को मिलता रहता है, तो असली ऊर्जा एक्चुअली हमें आपसे ही मिलती है। और अभी देखो, गाना जो मैं छोड़कर जा रही हूँ वो नागिन फिल्म का है, लेकिन देखो अपनी दोस्ती बहुत पक्की है, बहुत अच्छी है, और उसका इससे कोई संबंध जो है वो नहीं है। इसकी रिक्वेस्ट जो है वो मुझे आई, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो हम ये गाना प्ले करेंगे। मेरी आपकी मुलाकात जो है वो होगी 15 तारीख के बाद, यस, थोड़ा लंबा गैप है, लेकिन हाँ होगी होगी, मतलब मुझे कोई एकदम ऐसा वाला है ना, मुझे बात नहीं जाएगी इस गाने के ऊपर टिल देन, जब मुलाकात होती है अगली वाली, ध्यान रखिए अपना, और अच्छा म्यूजिक कंज्यूम करें, ये बैकग्राउंड के साथ मुझे खौफ आ रहा है, अच्छी रील्स देखें, अच्छी रील्स फॉरवर्ड करें, और बस अपना ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, इस समय वायरल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ टेक केयर, मास्क लगाकर जो है वो निकलें, ठीक है। अभी किसने और मैसेज किया है मुझे, ओके, दत्तात्रेय जी ने भी मैसेज करा है, ओके, मुकेश वालिया जी देहरादून से इन्होंने मैसेज करा है, और चंद्रकांत जी ने भी फिर से मैसेज करा, नहीं फिर से नहीं, चंद्रकांत जी ने अभी पहली बार जो है वो मैसेज करा है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए ये गाना लता जी की आवाज़ में सुनिए, और 8 बजे आप लोगों के लिए इंटरनेशनल शो शुरू हो जाएगा, तो बने रहिए एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते

0: और भौगोलिक संकेतक समझौते पर वार्ता को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा औद्योगिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत

0: सिंधी, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड

0: फ्यूल या सप्लाई चेन्स, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
1: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए 2 विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: उन्होंने 4 रन दिए। उसके बाद चरनी का हम देखे 3.2 ओवर 16 रन उन्होंने दिए। दीप्ति शर्मा 3 ओवर 9 रन उन्होंने दिए, देखे 3 विकेट चटकाए। उसके बाद प्रेमा रावत 3 ओवर 12 रन उन्होंने दिए। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि शफाली वर्मा जो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रही थी, 1 ओवर में सिर्फ 4 ही रन उन्होंने दिए थे और शायद अगर आज उन्हें 1-2 ओवर और मिलते तो एज एन ऑलराउंडर आपका ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सामने जब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग टीम नहीं होती और ऐसे मौके पर आप जब अपने बॉलर को जो ऑलरेडी बैट से परफॉर्म कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, लेकिन अगर आप उन्हें और बॉलिंग देते हैं तो वो और निखर के आते हैं क्योंकि फील्डिंग में आप देखिए काफी हाई पोटेंशियल कैचेस उन्होंने लिए आज।
4: आप की बात बिल्कुल जायज है, लेकिन अगर एक ऑलराउंडर वहाँ पे अगर बॉलिंग के लिए देख कर रहा है और वहाँ पे वो ज्यादा रन नहीं दे रहा है तो इस टाइमिंग के हिसाब से जो हमारा कैप्टन है हरमनप्रीत कौर वो ये देखती है कि सबसे पहले कि हमारे जो बॉलर्स हैं मेन बॉलर्स उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए आने वाले मुकाबले के लिए। एंड वो अगर कॉन्फिडेंस उन हमारे मेन बॉलर्स को नहीं मिलेगा, वो उनकी लाइन लेंथ और वो उस तरीके

0: किसे पकड़ के बोल नहीं डालेंगे, तो कहीं ना कहीं लैक हमारी टीम का ही होगा. तो दैट्स वाई एक ये हो सकता है कि ये सोच के उन्होंने बॉलर्स पे ज़्यादा भरोसा दिखाया. एंड शेफाली वर्मा, जैसे आपने बात करी ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर एक ऐसा बॉलर होता है जो कहीं, जो वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे विकेट ना निकले. और अगर उसको अभी से ही हम ओपन करके दिखा देंगे, आने वाले हमारे क्वार्टर फाइनल्स भी होने वाले हैं एंड सेमीफाइनल सब होने वाले, तो उसमें वो अगर हम उस बॉलर को ओवर कर दिखा देंगे कि किस तरीके से वो बॉल कर रही है, कैसे स्किट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट नहीं मिलेगा हमारी इंडियन टीम को.
1: मनोज, दुबई में जो आज मुकाबला हुआ है, कई रिकॉर्ड्स बने. जब बैटिंग की बात कर रहे थे तो स्मृति की हमने रिकॉर्ड की चर्चा की, लेकिन दीप्ति शर्मा आज एक बार फिर महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली बॉलर बन गई हैं. साथ ही साथ श्री चरणी की भी बात करें तो 2026 में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली वो बॉलर बन गई हैं. आज उन्होंने जो विकेट लिए उसको मिलाकर 30 विकेट उनके नाम हो चुके हैं. कैसे देखते हैं इन दोनों परफॉर्मेंस को?
2: देखिए, अगर दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के अनुकूल गेंदबाजी की है. उन्होंने कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं किए. उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, दीप्ति शर्मा जब भी बॉलिंग करने आती हैं, ज़्यादा स्पिन के बजाय बॉलिंग एंगल पर ज़्यादा उनका जोर होता है, विविधता पर ज़्यादा जोर होता है. वो उस तरह से नहीं था जैसे प्रेमा रावत को शार्प टर्न मिला था, इनका वो शार्प टर्न नहीं था. लेकिन अपने स्ट्रेंथ के अनुकूल गेंदबाजी करना, ऑफ स्पिन गेंदबाजी, क्रॉस सीम, और जो जिस तरह से इनकी गेंदबाजी है, मुझे लगता है उसी का उन्होंने और ज़्यादा विस्तार दिया है. उसका उन्हें पारितोषिक भी मिला लगातार विकेट चटकाने के तौर पर. इसी तरीके से आपने अभी जिक्र किया श्री चरणी का, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भाई, T20 जो रैंकिंग है ICC की, उसमें दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी है. और अपनी ख्याति के अनुकूल इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन भी किया है. जैसा आपने बताया कि लगातार विकेट चटका रही हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं. ये एक ऐसी प्लेयर है, हर ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं. इनको टेस्ट में आप गेंदबाजी दीजिए, वनडे में दीजिए, T20 में दीजिए, अपने प्रतिभा के साथ पूरा न्याय करती हैं. और सबसे अच्छी बात यह है, इंटेलिजेंट बॉलर हैं और अपोनेंट की कमजोरी का फायदा उठाती हैं. जी
3: वैशाली, देखिए आज अभी हम बॉलिंग क्लान की बात कर रहे हैं. दीप्ति शर्मा जैसी, जब एक्सपीरियंस बॉलर आपके पास होती है तो ऑब्वियसली यंगस्टर है आपके पास, क्रांति गौड़ आपकी यंगस्टर है, नंदिनी का हम देखते हैं, प्रेमा रावत का देखते हैं, कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस की तरफ अपना एक रुख करते हैं. तो दीप्ति शर्मा का इस बॉलिंग क्लान को लीड करना इस समय टीम इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे हम जितने भी सेटअप देखें, एशियन गेम्स है, 28 में आपका वर्ल्ड कप है, इससे पहले आपका ओलंपिक्स है. तो दीप्ति शर्मा का इस बॉलिंग क्लान में करंटली होना भारतीय खेमे के लिए कितना ज्यादा क्रूशियल है.
0: सिर्फ दीप्ति शर्मा ही नहीं, जैसे आपने यंगस्टर्स बोले हैं उनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एक अकेली दीप्ति शर्मा सिर्फ बॉलिंग में सारी विकेट्स नहीं ले सकती हैं. तो उसी तरीके से ये, अगर मैं बात करूँ श्री चरणी की, जैसे मनोज जी ने बताया कि श्री चरणी ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डालती है और विकेट चटकाती हैं, वहीं मैं बोलती हूँ कि प्रेमा रावत भी उतनी ही बेटर बॉलिंग करती है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग एयर में डाल के एंड जो बॉल उनका टर्न हुआ है, वो अभी तक उस उतनी तरीके का टर्न अभी तक देखने को नहीं मिला था जितना टर्न आज उन्होंने देखने को मिला है हमें.
1: चलते हैं दुबई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन प्लेयर ऑफ द मैच के लिए.
4: माइल्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हैव अ वर्ड. नताशा, योर फर्स्ट आउटिंग, लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव फ्रॉम बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग.
5: I think, you know, we did bowl really well in phases. Smriti obviously played out of this world and sort of showed us what they're capable of, but I think the girls definitely put their best foot forward and they did their best, and we still have a lot of learnings and a lot of areas to improve on. But I thought our first 10 to 11 overs, you know, we had a little bit of the game on our hands.
4: Well, conditions were conducive for the bowlers, and you talked about how the bowling unit did well initially, but where do you think you could have done better as a unit?
5: I think just a little bit maybe of consistency of our plans and executing those, but at the same time, you know, we're playing a class opposition, and we just have to get that ability to put the ball exactly where we want it to be and make it as hard as possible for players like this.
4: And we talk about betting, obviously the potential is there, you guys are technically correct, so where do you think, which areas do you need to work on?
5: I think we just need a bit more exposure and get a little bit more confidence. You know, I've seen all of us play some pretty spectacular shots and some pretty good innings. But, you know, of course, as you're climbing up the ladder and playing teams above you, it's how do you still gain that confidence?

0: फ्यूचर गेम्स। थैंक यू सो मच।
1: तो एक तरफ भारतीय खेमे में जीतने का उत्साह है, तो दूसरी तरफ हांगकांग हारी जरूर है, लेकिन एक बात की संतुष्टि भी है कि वर्ल्ड क्लास भारतीय टीम का उन्होंने सामना किया और कुछ हद तक ही सही, उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। क्या कहेंगे मनोज, जिस तरीके से हरमन ने कहा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि कुछ की प्लेयर्स का चलना राहत की बात है, क्योंकि भारत पहली टीम है इस विमेंस एशिया कप में जिसने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
2: जी हाँ बिल्कुल, और उनका कहना बहुत वाजिब भी है, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं हम लोग, और फिर भी कई अनुत्तरित सवाल हैं, उनका हल हमें ढूंढना होगा अभी, क्योंकि इस मैच में एक टीम 17वें ओवर तक पहुंच जाती है आपके खिलाफ, एक एसोसिएट टीम, और पिछले मैच में कोलैप्स आपका होता है, इसके अलावा नंबर 3 की पोजीशन जो हमने पहले भी जिस पर चर्चा की वो अभी गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, और ठीक है जेमिमा आएंगी या जस्सिका आएंगी तो शायद हम इस उम्मीद में कि समस्या का हल हो जाएगा, फिनिशर कौन होगा हमारा उसका भी अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है, क्योंकि रिचा भी उस पर बहुत ज़्यादा निर्भरता, वो भी बहुत आत्मघाती साबित हो सकती है, तो कुछ एक सवाल हैं। और भारती और प्रतिका जिस पर हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी लेवल वो नहीं है, प्रतिका टैलेंटेड हैं, टेक्निकली साउंड हैं, लेकिन T20 हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रही
1: जी,
2: तो कुल मिलाकर अनुत्तरित सवाल हैं, उसका हमें हल ढूंढना होगा, लेकिन अभी सेमीफाइनल है, फाइनल है, इन दो मैचों में जरूर मैं समझता हूं जब श्रीलंका या संभावित कोई हमारी टीम सामने आएगी तो इसका हल मैं समझता हूं युद्ध स्तर पर ढूंढना ही होगा हमें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मुश्किलें वहीं की वहीं बनी रहें और हम वन साइडेड मुकाबले जीत कर फूल कर कुप्पा हो जाएं।
1: जी हाँ, अगर श्रोताओं आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे विशेषज्ञों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर डायल करें 0112342108 और 2342108 पर आप अपने विचार या सवाल पूछ सकते हैं।
3: वैशाली, गेंदबाजी में आज थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, क्योंकि हांगकांग जैसे नेशन की हम बात करें फुल टाइम क्रिकेट प्लेइंग नेशन नहीं है, लेकिन इंडिया जो साल में इतना ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है, आप अक्रॉस फॉर्मेट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, WPL की सुविधा है आपके लिए अपने प्लेयर्स को इन्हेंस करने के लिए, और इतने डोमिनेंट साइड होने के बाद भी एक फ्रेश साइड आती है और लगभग 17वें ओवर तक वो खेल जाते हैं, तो आज शायद बॉलिंग में थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, क्योंकि दीप्ति शर्मा पहले 2 ओवर्स में 2 विकेट चटका चुकी थी और तीसरा ओवर उनका जो हरमनप्रीत कौर है वो 16वें ओवर में वो लेके आई है, तो शायद उन्हें पहले ही ला के टीम को जल्दी वापस पवेलियन लौटाया जा सकता था।
4: बिल्कुल लौटाया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें इकोनॉमी रेट तो वहाँ पे बॉलर्स का सेम नहीं है, कहीं पे किसी का 1 पॉइंट कुछ इकोनॉमी है, किसी की 2 है, ये इकोनॉमी बहुत बेटर है, एंड जो हमारे यंगेस्ट प्लेयर हैं उनको कॉन्फिडेंस देना भी एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई भी है, क्योंकि श्रीचरणी प्रेमा एंड नंदिनी शर्मा जैसे कि उन्होंने पहली विकेट ली थी, स्किट बॉल करवाई और यॉर्कर दी साथ में, तो ये एक एक्सपीरियंस से ही आता है, अगर जितने आप उस पिच पे टाइम स्पेंड करेंगे, और मैं जैसे बोलती हूँ बैटर के लिए वैसे ही मैं बोलती हूँ कि बॉलर के लिए भी, जितना बॉलिंग आप उस पिच पे करेंगे तो आपको पिच रीडिंग करनी आ जाएगी कि बॉल कैसे पिच कैसे रिएक्ट कर रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट था हमारे यंगेस्ट प्लेयर्स के लिए, यंगेस्ट बॉलर के लिए, अदरवाइज क्योंकि दीप्ति शर्मा ऑलरेडी यहाँ पे खेल चुकी हैं, उनको इस पिच के बारे में आइडिया है, क्रांति गौड भी खेल चुकी है इस ग्राउंड पे, लेकिन बाकी हमारे जितने भी बॉलर्स बचते हैं चाहे वो प्रेमा हो, नंदिनी हो या शेफाली वर्मा हो, सबको इस पिच का रीड करना बहुत जरूरी था, जिस जो उन्होंने एक उनको वो टाइम दिया उनको रीड करने के लिए, उनको वो ओवर दिया एंड उसके साथ साथ एक बैटर को रीड करके बॉल डालना जो हमारी दीप्ति शर्मा कर रही थी, जैसे मनोज जी ने भी बोला कि वो लाइन टू लेंथ बॉल डाल रही थी, एक मोमेंटम वो ब्रेक नहीं करा उन्होंने, वो ब्रेक करना जरूरी था, क्योंकि अगर जो ब्रेक हुआ है वो लास्ट के 15-16 ओवर के अंदर ब्रेक हुआ है, वो पहले ब्रेक हो जाता तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस और जल्दी ख़त्म भी हो सकता था ये मैच।
1: भारतीय महिला टीम की ये दूसरी सबसे बड़ी जीत है T20 इंटरनेशनल में। सबसे बड़ी जीत भारत ने 3 जून 2018 को क्वालालंपुर में मलेशिया के अगेंस्ट हासिल की थी। 142 रन से भारत ने वो मैच जीता था।

0: बल्लेबाजी करते हुए उस मैच में भारत ने 3 विकेट पर 169 रन बनाए थे और मलेशिया की पूरी टीम 27 रन पर आउट हो गई थी। तो आज कई रिकॉर्ड्स बने, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफी लंबे समय तक होगी मनोज, उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, बताएं कहां से आप बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं?
1: सर मेरा नाम सुधांशु है और मैं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। सर आज की कमेंट्री बहुत अच्छी लगी
0: जी,
1: और भारतीय महिला टीम हमारी सेमीफाइनल में पहुंची है, इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। सर मेरा सवाल ये है कि पहले तो आज स्मृति मंधाना गलत रन आउट थी, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जब हम खेलेंगे तो कितने रन बनेंगे और कितनी जल्दी हम पाकिस्तान को आउट करेंगे? सर
0: पिछले मैच में स्मृति रन आउट हुई थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान के मैच की चर्चा हम आगे जरूर करेंगे मनोज, लेकिन जिस रिकॉर्ड की चर्चा काफी लंबे समय तक होगी वो स्मृति मंधाना के ऑल टाइम हाईएस्ट रन स्कोरर की 10,880 रन पर वो पहुंच गई हैं। मिताली राज 10,868, लेकिन एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो 5वें नंबर पर इस लिस्ट में है वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर, 10,007 रन है उनके।
2: देखिये जी, उनका रनों के शिखर पर पहुंचना मैं तो यही कहूंगा कि उनको कॉन्फिडेंस देगा और ज्यादा, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हरमनप्रीत कौर, अगर ये सही समय है उनको मौका देने का, यानी स्मृति मंधाना को अगर इस वक्त टीम की कमान सौंप दी जाए तो सोने पे सुहागा होगा। अगला वर्ल्ड कप भी आना है और उनको पूरी टीम को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक तो ये वजह है, एक्सेलरेशन हो, कमजोर गेंदों को ना बख्शना और अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलना, एक रणनीति बनाना, क्योंकि अगर बीच मैदान में स्मृति मंधाना है तो मेरे ख्याल से किसी और दूसरे को कोई और अलग से रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उनको बहुत ही अलग साबित करती हैं, और माइंडसेट जो है हमारा बहुत पॉजिटिव है, जैसा भी कॉलर ने कहा, तारीफ की इनकी, तो मैं तो यही कहूंगा कि इस प्लेयर पर भरोसा रखो और इनको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का शायद ये सही समय है।
0: और शतकों के मामले में भी वो सबसे ऊपर चली गई हैं, 18वां शतक था उनका, मेगलैनिंग को पीछे छोड़ा, लेकिन इस लिस्ट में एक्टिव प्लेयर्स काफी ज्यादा हैं। लॉरा वुल्फार्ट हैं 17 शतक के साथ, वेस्टइंडीज के हेली मैथ्यूज हैं 15

0: मैं तो कहूंगा आज जिसने ये पारी नहीं देखी उसको जरूर ये पारी का लुत्फ बाद में जरूर उठाना चाहिए, देखना चाहिए। और जो तमाम एकेडमीज में जो बच्चे सीख रहे हैं क्रिकेट में आगे जाना चाहते हैं उनको ऐसी पारियां उनको उनके लिए बिल्कुल एक टॉनिक का काम कर सकती हैं।
1: बिल्कुल, अभी मनोज जी बात कर रहे थे कि ये टॉनिक की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है 137 रन्स की जो विक्ट्री है, आप सेमीफाइनल, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और 137 रन्स का जो ये विक्ट्री का मार्जिन है, कहीं ना कहीं वैशाली काफी ज्यादा अलार्मिंग नोट रहेगा बाकी टीम्स के लिए, क्योंकि अभी आपको ग्रुप ए में अगला जो आपका मुकाबला है पाकिस्तान के साथ है, जब आप फाइनल में जाएंगे ग्रुप बी से भी हम देखें कहीं ना कहीं थोड़ा जो स्ट्रेंथिंग टीम लग रही है वो श्रीलंका की लग रही है, और अभी ये जो आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज है ये सारी टीम्स ने देखी होंगी, तो कहीं ना कहीं अब डर का माहौल होगा विमेंस एशिया कप में भारत को लेके बाकी टीम्स का
2: थोड़ा तो होगा, लेकिन उनको सामने वाली कैसी टीम है वो भी देखनी चाहिए हमें, क्योंकि हम आगे तो पहुंच रहे हैं लेकिन हमारे पास जो कमियां हैं उन कमियों को साथ लेके नहीं जाना है हमें, क्योंकि अगर हम उन कमियों को साथ लेके गए तो वो हमें लैग कर सकती है पीछे आने के लिए, तो हमें वो कमियां यहीं इसी मैच में छोड़ के आगे बढ़ना है और जो हमारे लैक हो रहे हैं उसको फुलफिल करना है, उन पोजिशंस को फिल करना है, उसके बाद ही हम आगे पहुँच सकते हैं। और जैसे अभी मैं और मनोज जी बात कर रहे थे कि थर्ड पोजीशन एंड मिडल ऑर्डर हमारे नहीं है हिटिंग शॉटर्स, तो वो हमें हमारी टीम को बहुत जरूरत है उनकी, क्योंकि जैसे आपने बात करी श्रीलंका के साथ हमारा मैच हो सकता है तो उसके लिए प्रिपरेशन हमें अभी से करनी होगी, एंड मोमेंट पे अगर हम वो प्रिपरेशन करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन हमें अभी से ढूंढ के चलना है, बिकॉज वी नो कि पाकिस्तान के बाद हम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं तो नेक्स्ट मैच हमें किसके साथ ही मिलेगा, तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होकर चले तो वो ज़्यादा बेटर है इंडियन टीम के लिए, वो ट्रॉफी के नज़दीक पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा।
3: मनोज जी, जैसा कि कॉलर ने भी इशारा किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है, सवाल मेरा यह है कि क्या वो हाई वोल्टेज इंटेंसिटी अब भी मेंटेन हो रही है, क्योंकि जो स्तर है पाकिस्तानी क्रिकेट का और भारतीय टीम जिस स्तर का क्रिकेट खेल रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर दुबई में वही चिर प्रतिद्वंद्विता दिखेगी भारत पाकिस्तान की जो दशकों पुरानी रही है?
0: देखिए, जो भी कॉलर ने अभी कहा या जैसा आपने कहा, आप भी समझते हैं और यहाँ वैशाली जी भी मौजूद हैं, आपने खुद इस बात को रियलाइज़ किया होगा कि जब भी कभी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला महिला क्रिकेट में होता है तो मुझे तो कई बार, सच बताऊं ईमानदारी से, शेर और मेमने की लड़ाई लगती है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को भुनाते रहें लेकिन कुल मिलाकर हम जहां पर जिस मुकाम पे भारतीय क्रिकेट खड़ा है, जिस पर जिसको सींचा है भारतीय खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान बिल्कुल शैशव अवस्था में है। और रही बात ओवरऑल क्रिकेट देखने की, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नाम आते ही आप गुल्ली डंडे का भी कोई मैच करवा देंगे तो उसमें भी एक रोमांच बना रहेगा, लेकिन क्रिकेट में आसपास भी कहीं कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ एक अपवाद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम निर्विवाद रूप से चैंपियन ही रहे हैं, पाकिस्तान ने भी एक दो झटके दिए हैं हमें विमेन क्रिकेट में, लेकिन यही है कि कुल मिलाकर अपोनेंट को कमजोर नहीं समझना, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या अन्य कोई टीम हो। मैं तो कहूंगा एसोसिएट टीम को भी आप कमजोर मत समझिए, क्योंकि पिछले मैच में उसने हमारी कलाई खोल दी थी 40 रन के अंतराल में, 40 के आसपास रन देकर 8 विकेट चटका लिए थे भारत के, तो वो एक चिंता का सबब है। और जीत हार इन टूर्नामेंट्स में, जैसे मैं हम अक्सर कह भी रहे हैं, चर्चा भी हो रही है हमारी इस बारे में, कि वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। ज़रूरत है, जो हमने गलतियां की हैं साउथ अफ्रीका के दौरे पर, जो हमने गलतियां की हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, जो हम इस बार लगातार हारने का रिकॉर्ड है हमारा, लगातार हम जीत नहीं पा रहे हैं, उन वहां गलतियों को कैसे दूर करें।
3: जी हाँ, बिल्कुल, आज का मुकाबला ज़रूर समाप्त हो गया है, लेकिन जैसा कि मनोज जी बता रहे हैं कि आने वाले मुकाबलों में हमें ज़रूर टफ फाइट मिल सकती है, तो अपनी कमियों को दुरुस्त कीजिए और जो पॉजिटिव्स हैं उसको और बेहतर करते चलिए। मनोज जी आपका, वैशाली आपका, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी के श्रोताओं तक विशेषज्ञ राय पहुँचाने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
3: हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम का, जिसमें आशा शर्मा, लीला सेठी, कपिला, त्रिलोक गुप्ता और उर्मिला शामिल थीं। प्रोडक्शन टीम में सहयोग दिया माधवी तिवारी और स्वाति कपूर ने, और इस पूरे कार्यक्रम को आप तक लेकर आए हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान ने। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।

0: अभी अब विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत भारत और हांगकांग के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग ऑफ विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं प्रोग्राम रंगे महफिल में विनीता बेदी के साथ। और बात करें अगर इश्क की, तो इस छोटे से शब्द में जाने कितनी सदियां बसी हैं दोस्तों। कोई इसे पाना कहता है तो कोई खोना, कोई इसे सुकून समझता है तो कोई बेचैनी। शायद इश्क की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसकी कोई एक परिभाषा है ही नहीं, लेकिन फिर भी

दोस्तों, कभी कभी दिल बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द ही साथ नहीं देते, और तब आंखें बोलती हैं तो खामोशी बोलती है, एक ठहरी हुई नजर भी बोलती है। दिल को शायद बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ इतना कि कोई समझ ले कि उसके भीतर आखिर चल क्या रहा है। दिल ही तो है ना।

दिल तो आखिर दिल है ना, ना उसे समझाया जा सकता है, ना हर बार रोका जा सकता है। जो बात दिमाग छोड़ जाता है, दिल उसे बहुत देर तक पकड़े रहता है। किसी की एक मुस्कान या

छोटी सी मुलाकात, कोई भूली सी बात, दिल इन सब को अपनी यादों में बहुत ही संभाल कर रख लेता है, कभी खुशी की तरह तो कभी गम की तरह।

दोस्तों, रंगे महफिल की आज की महफिल में हमने कुछ ऐसे पन्नों को धीरे से छुआ जो खुले तो रहते हैं, बस हम उन्हें हर रोज पढ़ते नहीं। मैं हूं विनीता बेदी और आप सुन रहे थे रंगे महफिल। फिर मिलेंगे किसी और शाम कुछ और गजलों और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक दिल में मोहब्बत रखिए, रिश्तों में थोड़ी नरमी रखिए, और अगर कोई अपना याद आ जाए तो उसे सिर्फ याद मत कीजिए, बल्कि कभी उसका हाल भी पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ना बहुत देर तक सिर्फ यादों के सहारे ही नहीं चलते, इन्हीं जज्बातों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शब खैर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आइए सुनते हैं इस समय के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग दह वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास को की चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल ऑटोमेटिव इंडस्ट्री से कहा है कि वे अपना उत्पादन और निर्यात का दायरा बढ़ाएं और दुनिया के बाजारों से पहचान बनाने के लिए तैयार हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थानों से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री के साथ दो और विमान भेजे, जिनमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री शामिल है। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। और महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: दोस्तों 12:03 और 20 सेकंड हुए हैं। आप प्रस्तुत है प्रोग्राम जीरो आर शो। प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कान्हा की शरारतों में भी एक अलग ही मिठास है। उनकी नटखट अदाओं पर यशोदा मैया की शिकायत भी प्यार बन जाती है। शायद इसीलिए कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि जिंदगी में थोड़ी सी मासूमियत और थोड़ी सी शरारत भी कितनी खूबसूरत होती है। जहां मुस्कान हो वहां मन अपने आप हल्का हो जाता है, और जहां कान्हा का नाम हो वहां खुशियां खुद ही चली आती हैं। तो दोस्तों कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अमर प्रेम का ये सदाबहार गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

और दोस्तों आप बात करते हैं कुछ आवाज की। जी हाँ, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें कान नहीं दिल सुनता है, और जब दिल में किसी की चाहत हो तो दूरियां भी जैसे कम लगने लगती हैं। प्यार के इंतजार में एक खूबसूरती होती है, और किसी की एक झलक की उम्मीद भी दिल को मुस्कुराने की वजह दे देती है। तो आइए इसी प्यार और एहसास से भरे माहौल में सुनते हैं फिल्म एतबार का ये खूबसूरत संगीत, जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले और भूपेंद्र सिंह ने।

दोस्तों, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे पर किए गए भरोसे से मजबूत होते हैं। कुछ वादे वक्त के साथ पुराने नहीं पड़ते बल्कि हर गुजरते पल के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। किसी अपने से किया हुआ एक छोटा सा वादा कभी कभी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाता है। तो आइए प्यार, विश्वास और हमेशा साथ निभाने के इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी का ये गीत, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: कहते हैं प्यार की शुरुआत अक्सर बड़ी खामोशी से होती है, और पता तब चलता है जब दिल किसी एक नाम पर आकर ठहर जाता है। तो इसी मीठी सी उलझन और खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं फिल्म रंग का ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: 12:31 और 32 सेकंड हुए हैं दोस्तों, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस समय आप सुन रहे हैं जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
0: कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में कह पाना आसान नहीं होता, बस दिल उन्हें महसूस करता है। किसी की मौजूदगी से चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उसकी खुशी अपनी खुशी लगे, तो समझिए दिल ने अपना हम सफर चुन लिया है। प्यार शायद यही है जहां धड़कन अपनी हो लेकिन वजह किसी और की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों, दिल एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर कोई ना कोई एहसास लिखा होता है। कभी खुशी, कभी इंतज़ार, कभी प्यार और कभी ऐसी बातें जिन्हें हम चाहकर भी किसी से कह नहीं पाते। लेकिन दिल की सबसे खूबसूरत बात यही है कि उसमें जितना प्यार बांटे उतना ही बढ़ता जाता है। तो आइए दिल की इन्हीं अनकहे एहसासों को आवाज देते हुए सुनते हैं फिल्म ईमानदार का ये गीत, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और आशा भोसले ने।

बहुत खूबसूरत सी फिल्म आई थी 1984 में, फिल्म का नाम था ये इश्क नहीं आसा, और इसमें मुख्य भूमिका में थी पद्मिनी कोल्हापुरे। तो आइए आपको सुनवाते हैं उस फिल्म का एक बेहतरीन सा गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और जीरो आर शो के आखिर में आइए सुनवाते हैं आपको फासले फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

एक बजे हैं, आइए अब सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेश

निदेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौवहन की दिशा में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र संस्थाओं से विश्वास 2026 योजना के तहत लंबे समय से लंबित ईपीएफ बकाया विवादों को कम दर पर निपटाने की अपील की है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राह सामग्री की नई खेप भेजी है, जिनमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। वहीं 4,216 लोग अब भी लापता हैं। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 1:03 और 5 सेकंड हुए हैं। आइए आप सुनते हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक प्रोग्राम सुहानी रात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

दो बजते हैं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाग द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा में 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की चार किस्मों की ये खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी गई है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी संतेंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है, वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है।

महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देशभर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: आकाशवाणी
1: 2:03 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम बुलाए ना बने। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया और इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: शील, शील कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। और अभी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जीकर देखे, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार। जाओ ना।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

देशभक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

या पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक तव वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदारी देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिलों में बाढ़ की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सदस्यीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है, वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी बारिश का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देशभर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। समय उचला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: 보리값샵 보리감기밭 रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी ची नजर में है जादू
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन
3: रोजा

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी, FM रेनबो।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ प्रातः के 4 बजे हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और बेल्जियम ने व्यापार निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाक द वेवर के बीच कल नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा से 18 मीट्रिक टन जैविक चावल की खेप को निर्यात के लिए रवाना किया है। चावल की 4 किस्मों की यह खेप ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स भेजी गई है। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने सदस्यीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेपाल तिब्बत में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है, वहीं 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने कल नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है, जिसमें फॉरेंसिक किट और मेडिकल सामग्री भी शामिल है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश का अनुमान है। और वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है। और आज देशभर में जन्माष्टमी के अवसर पर उत्सव का माहौल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

यह आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर अब समय हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।